हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित। समाचारों के तुरंत बाद सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार

0: बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं खुद पर विश्वास करो, सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 195। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता। संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा भाग 10। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के। आठ पर सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा आज अभिनेता निर्माता आदित्य चोपड़ा पर। इसका पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सुन सकते हैं। 10 सुबह पिटारा में आज के मेहमान सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। इस बातचीत का आज दूसरा भाग आप सुन सकेंगे। ग्यारह बजे रंग तरंग और 12:05 पर दोपहर यादों की महफिल। 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 सखी सहेली इसके अंतर्गत सुनेगा संवाद और विकास के विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस और 1 कप चाय का अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर सुनिएगा कहानी पद्मश्री की राहीबाई सोमा पोपुरे महाराष्ट्र की बीज माता और सुनिएगा मुझे कुछ कहना है फोबिया से कैसे बचे। 4 हेलो फरमाइश और 5 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। 4 का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा 7 से। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे

मिलिए। इनसे मिलिए मैं आज सुनिए गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का तीसरा भाग। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन जान बची, लेखन विष्णु दत्त गौड़ का और निर्देशन जयदेव शर्मा कमल का। आठ बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम, 9:30 पर आज के फनकार, 10 बजे छाया गीत सुनिएगा और 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग 195।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिबाने जा रहे हैं।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार, भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी। नमस्कार अनूप जी।
2: नमस्कार जी।
1: भजन के आज कौन से रंगों से हम सबको सराबोर करेंगे? हमें जहां तक याद आ रहा है एक भजन, अगर आप कहें तो उसके बारे में अगर आप बताएं।
2: कौन सा आपको याद आ रहा है?
1: इतना तो करना स्वामी जब प्राण तल अच्छा से निकले।
2: बहुत सुंदर भजन है,
1: इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: जी हाँ, ये भजन बहुत साल पहले मैंने इंदुबेन धानक से सुना था, जो मुंबई में ही रहती थी, फिर देवलाली शिफ्ट हो गई थी। तो वो इस भजन को बिल्कुल आंख बंद करके तन्मयता से रोते रोते गाती थी, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी इसमें। तो वो भजन मैंने भी गाना शुरू कर दिया और जो इसे सुनते हैं वो सच में द्रवित हो जाते हैं। भजन इतना अच्छा है, सुनाता हूँ
1: जी। बिल्कुल।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए कि ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं और ना भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर लगा। आपके भजन में अनूप जी, कला पक्ष और भाव पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें कुछ उदाहरण के तौर पर बताइए भाव पक्ष और कला पक्ष को।
1: कला पक्ष जो है वो संगीत है और भाव पक्ष जो है वो कविता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द प्रथम, नाद द्वितीय। जो कविता है वो सामने है, संगीत उसके पीछे है। यदि हम यूं ही आलाप लेते रहें तो उसका असर नहीं होता है, लेकिन वही आलाप हम शब्दों के साथ लें तो उसका असर हो जाता है
0: जी।
1: ठुमक चलत रामचंद्र अगर गाएंगे तो लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन अगर सिर्फ आलाप में ठुमक चलत रामचंद्र गाएंगे तो उसका असर इतना नहीं होगा। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। तो वो हमारा भाव

0: पक्ष है। शब्दों के माध्यम से हम भाव प्रस्तुत करते हैं और जो संगीत की निपुणता है उससे हम कला पक्ष को उजागर करते हैं, और जब दोनों साथ में मिलके लोगों तक पहुंचते हैं तो उसका असर स्वर्गीय होता है।
1: अनूप जी, बड़ी बढ़िया बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई, और अब
0: हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला की ये थी दसवीं कड़ी। और अगली कड़ी के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर। सुनना न भूलिएगा संगीत सरिता।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिएगा बस थोड़ा सा इंतजार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: अराउंड द वर्ल्ड इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुबह का तारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उषा मंगेशकर के आवाज में ये गीत। गीतकार हैं नूर लखनवी और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

चाबी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ गया कोला। खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन, भाभी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ गया कोला। भाभी जी ने

0: ಕಾಣದೆ
1: दांत ली करूँ तो मुझको जेल भेज दो, तुमने में क्या है ये जवाब।

0: शहरी की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ।
2: किक किक किक किक।
1: टेपनिंग पहिया। अरे पंपिंग।

0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें थी, बोल साहिल लुधियानवी ने लिखे थे और धुन एसटी परमन ने बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं। अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में शबाब फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी।

0: नास्तिक फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी प्रदीप की और संगीत निर्देशन सी रामचंद्र का था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

बूट पॉलिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें थीं। बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और धुन शंकर जयकिशन ने बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।

श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हुए हैं, लेकर हाजिर हैं आप सबों की सेवा में अपना दैनिक कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में स्वागत है आप सभी श्रोताओं को। करिए स्वीकार अपने रेडियो दोस्त विनोद का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार से। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और सुबह के 7:30 हुए हैं। आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। कार्यक्रम को गति देते हुए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 21 मई वर्ष का 141वां दिन है। लीप वर्ष में यह 142वां दिन है। साल में अभी और 224 दिन शेष हैं। 21 मई के महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालें तो आज ही के दिन यानी 21 मई 1996 को प्रसिद्ध शीतल पेय कंपनी पेप्सी ने विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में विज्ञापन फिल्म बनाने की घोषणा की, और आज ही के दिन 2003 को विश्व के 190 से भी अधिक देशों ने तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को जिनेवा में मंजूरी दी थी, और आज ही के दिन यानी 21 मई 2008 को भारतीय स्टेट बैंक ने कृषि कर्ज पर रोक लगाने संबंधित अपने सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से वापस किया। रिजर्व बैंक ने सेंचुरियन बैंक और पंजाब के HDFC बैंक के विलय प्रस्ताव को मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना के तहत 15 देशों की वायुसेनाओं के 90 अधिकारियों का एक साझा टेबल अभ्यास हैदराबाद में प्रारंभ किया गया, और आज ही के दिन 2010 को उड़ीसा तट पर बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना की जंगी जहाज रणवीर से भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के उभरवाधर पर शिक्षण संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब नजर डालते हैं उन व्यक्तियों पर जो आज के दिन इस दुनिया में पहला कदम रखा यानी जन्म लिया।

सावन को जन्मे सर सुंदर लाल का, जो प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। सर सुंदर लाल जी का जन्म आज ही के दिन 1857 को हुआ था और आज ही के दिन जन्म हुआ था 1931 को शरद जोशी का, जो भारत के प्रसिद्ध व्यंग्यकार रचनाकार थे। उनका भी जन्म आज ही के दिन 1931 को शरद जोशी जी का भी हुआ था। और आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय मूल के हिंदी लेखक हैं जो ब्रिटेन से हैं, नरेश भारतीय का। उनका जन्म आज ही के दिन 1940 को हुआ था। अब हम नजर डालेंगे आज निधन हुए व्यक्तियों पर। इसमें पहला नाम आ रहा है 1979 को निधन हुए जानकी देवी बजाज का, जो गांधीवादी जीवन शैली की कट्टर समर्थक थी। उनका निधन आज ही के दिन 1979 को जानकी देवी बजाज का हुआ था। और आज ही के दिन निधन हुआ था 1960 को गामा पहलवान का, जो भारत के एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिन्होंने अपने जीवन में कोई कुश्ती नहीं हारी, जिनका नाम था गामा पहलवान। उनका निधन आज ही के दिन 1960 को हुआ था। और आज ही के दिन निधन हुआ था प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिप्पो आंदोलन के प्रमुख नेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा का। उनका भी निधन आज ही के दिन 2021 को हुआ था। अब हम कार्यक्रम आज के इतिहास के आखिर में नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों पर। तो इसमें आज हम मना रहे हैं आतंकवाद विरोध बलिदान दिवस और आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस।

श्रोताओं, अभी आपने आज के इतिहास के बारे में जाना। कार्यक्रम को गति देने से पहले अब सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म है दोस्ती।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को फिल्म दोस्ती से। कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में अब हम नज़र डालेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। अवर प्रादेशिक नियोजनालय के प्रांगण में बुधवार को सहायक निदेशक नियोजन सुबोध कुमार की अध्यक्षता में मौके पर उपस्थित जिला नियोजन पदाधिकारी दिनेश तिवारी, जिला कौशल प्रबंधक मनीष कुमार एवं रणजय कुमार सहित अन्य कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पटना से ज्ञान भवन उत्तरी मैदान में 25, 26 और 27 मई के लगने वाले रोजगार मेला की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की गई। मेले में ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवकों को सम्मिलित करने तथा रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर दी गई। सदर अस्पताल सासाराम में बुधवार को विशेष दिव्यांगता शिविर का आयोजन कर हाथी पांव फाइलेरिया से पीड़ित मरीजों की जांच एवं ग्रेडिंग की गई। शिविर में पहुंचे 25 मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने के लिए चिन्हित किया गया। अब इन मरीजों को भी अन्य दिव्यांगजनों की तरह सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

कैमूर जिले के एसवीपी कॉलेज भभुआ में बुधवार को बौद्धिक संपदा अधिकार कंपनी पंजीकरण अनुबंध और वस्तु एवं सेवा कर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज भभुआ और जिला उद्योग विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ। कार्यशाला स्टार्टअप सेल जीईसी कैमूर उद्योग मंत्रालय और डीबीसी स्टार कॉलेज प्रोग्राम सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में सौजन्य से कराया गया। स्टार्टअप सेल के फैकल्टी इंचार्ज डॉक्टर ऋषि निगम सहायक आचार्य जीईसी कैमूर ने बताया कि सरकार को स्टार्टअप स्कीम के तहत हर ओ नवमेसी विचार पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद सहायता के तौर पर सरकार प्रारंभिक निवेश के तौर पर 10 लाख रुपए की सहायता देगी। सहसाराम विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के अंतर्गत बुधवार को डीडीयू मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे परिसर के साफ सफाई अभियान चलाकर रेल कर्मियों, यात्रियों एवं स्थानीय लोगों को स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल व्यवहार अपनाने हेतु जागरूक किया गया।

किए जा चुके हैं, जिनमें से 255 आवेदन में से 228 आवेदनों का भुगतान सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इस बारे में जानकारी देते हुए महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कैमूर हेमलता कुमारी ने बताया कि पारंपरिक कामगारों को पीएम विश्वकर्मा योजना से कम ब्याज पर रोजगार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कैमूर के 11 प्रखंड में जरूरत के हिसाब से करीब 15,000 चापाकल लगाए गए हैं। गर्मी बढ़ी, जलस्तर थोड़ा नीचे खिसका तो पीने की पानी के लिए बंद पड़े चापाकलों की मरम्मत के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के शिकायतें आने लगी। पिछले एक माह में 735 के करीब ऐसी शिकायतें पंजीकृत की गई है। आम शिकायतें और सर्वे में बंद पड़े चिन्हित किए गए चापाकलों को मरम्मत किया जा रहा है। आगामी 2 जून से जिले में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। इस गर्मी की छुट्टी की अवधि में जिले में समुदाय आधारित शिक्षण अभियान चलेगा, जिसमें सरकारी स्कूलों की कक्षा 4, 5 और 6 से बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता को मजबूत किया जाएगा। इस अभियान के प्रभावी और संचल संचालन के लिए जिला शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है।

कैमूर जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 225 आवेदन स्वीकृत

इसी कड़ी में सुन लेते हैं एक और गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। गोविंद मुनीस ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और फिल्म है आंसू बन गए फूल।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म आंसू बन गए फूल से। श्रोताओं, अब नजर डालते हैं मौसम समाचारों पर। आज 21 मई है। 21 मई के मौसम पूर्वानुमान लगाएं तो वर्षा 0 के बराबर, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की पूर्वानुमान लगाई गई है। अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता 60%, न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता 15% रहने की पूर्वानुमान लगाई गई है। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह सकती है। पवन दिशा 110 डिग्री की तरफ। क्लाउड कोवर ओक्टा में माने तो 0 रहने की अनुमान लगाई गई है। किसी भी प्रकार की आज कोई चेतावनी नहीं दी गई है। चलते चलते नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। लगभग सभी अखबारों ने एक ही तरह की खबर को प्राथमिकता देते हुए अपने अपने तरीके से छापा है। सचित्र छापा है, हिंदुस्तान ने लिखता है तकनीकी संस्थानों में युवा पेशेवरों की नियुक्ति होगी। राज्य के तकनीकी संस्थानों में युवा विशेषज्ञ पेशेवर की नियुक्ति होगी। कैबिनेट के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और उनके अधीनस्थ इंजीनियर और पॉलिटेक्निक संस्थानों में तकनीकी व विशेषज्ञ सेवाओं के लिए युवा पेशेवर चयनित नीति 2026 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। हिंदुस्तान के हवाले से खबर है डोभी में औद्योगिक कॉरिडोर के पास जलाशय बनेगा। अमेरिकी संसद में ईरान से जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास। ये सारी खबरें हिंदुस्तान से। अगली खबर दैनिक जागरण से लेते हैं। दैनिक जागरण लिखता है एनएच के किनारे बने अवैध ढाबा होटल हटेंगे, अनधिकृत पार्किंग पर प्रतिबंध लगेगा। और ये खबर है दैनिक जागरण से ही, लिखता है गया से बैंकॉक हवाई सेवा जल्द। बिहार सरकार ने राज्य की अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्कता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंकॉक यानी थाईलैंड के बीच नॉन स्टॉप हवाई सेवा शुरू करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस का चयन किया गया है। दैनिक जागरण के हवाले से खबर है सिपाही के 5312 पदों के लिए परीक्षा की तिथि घोषित। एक देश एक चुनाव से बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए। एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दावा किया कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा एक साथ है कराने से 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे देश की जीडीपी में 1.6% की वृद्धि हो सकती है। प्रभात खबर के हवाले से खबर है गया से बैंकॉक के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान। और दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है कि ग्लोबल कनेक्टिव इंडस्ट्रियल हब की राह पर दौड़ा बिहार। 5312 सिपाहियों पदों की

6 जून में आईजी बॉर्डर पर नया पद बना, यह खबर है दैनिक भास्कर से। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार में पुलिस भर्ती और आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने नेक्स्ट लेवल की तैयारी की है। राज्य में एक तरफ रोजगार के बड़े अवसर खुल रहे हैं तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और खुफिया तंत्र को अभेद्य बनाया जा रहा है। जून महीने में मध्य निदेश जेल परिवहन वायरलेस और विशेष शाखा में कुल 5312 सिपाही पदों के लिए 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी लिखित परीक्षा देंगे। वही 1799 दरोगा पदों के लिए 27 मई को 35857 अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में बैठेंगे। बिना एडमिट कार्ड और फोटोयुक्त पहचान पत्र के केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। डाक से कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मोबाइल स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ और पेन ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंध यानी रोक लगा दी गई है।

दैनिक भास्कर लिखता है, 5 IPS व 8 DSP बदले, वैभव नवगछिया के SP बने, पटना सिटी 2 के SDPO पूर्णिया गए। बिहार में नई सरकार बनने के बाद से पुलिस महकमे में बड़े बदलावों का दौर जारी है। सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लगातार अधिकारियों की कुर्सियां बदल रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को पुलिस विभाग में एक और बड़ा फेरबदल देखने को मिला। गृह विभाग में 5 IPS और 8 SDPO स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त विनोद को कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

हमारे श्रोता दैनिक कार्यक्रम नमस्ते रोहता सुन रहे थे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, समाचार प्रभात सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित थोड़ी देर में।

आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले

0: अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
4: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी। प्रियंका
0: जी, जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
5: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
6: So we look forward to celebrating

0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार प्रभात के बाद स्वागत है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। सुनते हैं एक देशभक्ति संगीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म देश प्रेमी से, मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म है देश प्रेमी।
1: नफरत

अभी आपने देश प्रेमी फिल्म से एक देशभक्ति संगीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। सुबह के 8:20 होने वाले हैं। सुनते हैं आप श्रोताओं के द्वारा भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम पसंद आपकी में सुनेंगे आप श्रोताओं के द्वारा भेजे गए पत्रों के आधार पर कुछ फिल्मी गाना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ में खूबसूरत सा।

संगीत साहिर के बोल हैं, खयाम का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देवबर्मन का संगीत है, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। फिल्म है लाखों में एक, तो आइए सुनते हैं फिल्म लाखों में एक से ये गाना आप सबों की फरमाइश पर। फरमाइश करता है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमर खेण महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाकर राही, श्रीमती सरिता गुहाकर, प्रिंस एकांश गुहाकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं श्रीमती वैशाली शैलेश गुहाकर, श्वेता सुमित गुहाकर, कुमारी ध्वनि गुहाकर, परी बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गुहाकर, प्रणीता गुहाकर, टुंडला टुकटुक गुहाकर। और ये है पत्र डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का। आप सबों ने सुनना चाहा है लाखों में एक फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम का अगला पेशकश मुकेश कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, साहिर के बोल हैं, खयाम का संगीत है, फिल्म है कभी कभी, सुनना चाहा है आप सबों ने। थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। इसी गाने के लिए ख्वाहिशमंद ये श्रोता हैं, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, अजफर हामिद, मशकूर आलम और शमा परवीन। आप सबों ने सुनना चाहा है कभी कभी, फिल्म का ये गाना मुकेश कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

आकाशवाणी पटना रउआ सभे खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से प्रसारित पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत सा गीत। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म है पगला कहीं का। सुनना चाहे आप सबों ने। फुटानी चौक नरहन एस्टेट से भाई फटफटिया झा, उदय कांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा, बीके सूर गनैया, लल्लू पंडित। ये श्रोता हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। आप सबों ने सुनना चाहे पगला कहीं का फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कार्यक्रम पसंद आपकी की आखिरी पेशकश फिल्म आराधना से किशोर कुमार ने इसे गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, एसडी बर्मन का संगीत है। सुनना चाहा है आप सबों ने कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। ये श्रोता हैं मोहल्ला लोहार की नीम सासाराम से मोहम्मद चांद अंसारी, सद्दाम अंसारी, नौशाद आलम, दिलनवाज अंसारी, नसीम कुरैशी, जमाल अहमद, एहतराम अंसारी, रिजवी अंसारी और अरसू अंसारी। ये श्रोता हैं मोहल्ला खिलनगंज सासाराम से लोकेश कुमार साहू, आयुष कुमार साहू, ललिता देवी। ये पत्र है मोहल्ला बरादरी सासाराम से मोहम्मद जमाल और गांधी के नीम सासाराम से विवेक कुमार और रितेश कुमार का। आप सबों ने सुनना चाहा है आराधना फिल्म का एक गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

अभी हमारे श्रोता फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच, शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
1: जागो ग्राहक जागो।
2: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
1: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया। प्रदेश के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया, राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में छठे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राशि का हस्तांतरण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सातवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं अब तक प्राप्त नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 में स्थानीय निकायों को अनुदान देने के छठे राज्य वित्त आयोग की पूर्व स्वीकृत अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि यदि अनुदान राशि का हस्तांतरण नहीं होता तो ग्रामीण और शहरी निकायों की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। इस स्थिति से बचने के लिए 2021-25 तक लागू व्यवस्था के अनुरूप ही राशि का हस्तांतरण और योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रहेगा। कैबिनेट बैठक में कैमूर के कुदरा में पावर प्लांट और ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नालंदा जिले के बेन में वायल राइस उत्पादन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
1: उद्योग विभाग का दो मामला था, एक मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड अरावन बेन नालंदा को निवेश प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।

0: और इसी प्रकार दूसरा एजेंडा था मिसर्स ईएसई एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड खुदरा कैमूर को भी सिमिलरली वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
1: कैबिनेट ने प्रदेश में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क बढ़ाने की नीति के तहत इंडिगो को गया जी से बैंकॉक सीधी उड़ान की अनुमति दे दी है।
0: नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य हेतु नॉन स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो एयरलाइंस से गया जी बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को बिहार वित्त संशोधन नियमावली के संगत प्रावधान के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने तथा वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 12 महीने के लिए अधिकतम 10 करोड़ 40 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई।
1: कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। प्रदेश में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर डायल 112 के अंतर्गत अब रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पथ परिवहन विभाग और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें भी इस हेल्पलाइन पर दी जा सकेंगी। राज्य तकनीकी सेवाएं और संचार के अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोढ़ा ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए डायल 112 का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे।
2: डायल 112 पूर्ण तरह से निःशुल्क सर्विस है और अभी इसमें हम लोग और भी काफी सारे डेवलपमेंट्स करेंगे। जितने पार्क्स वगैरह हमारे जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे हम लोग पैनिक बटन लगाएंगे जिससे कि 112 की सेवाएं तुरंत उससे इंटेग्रेट हो जाए। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है बिहार में भी अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो कार से ही ऑटोमेटिकली 112 को सीधा सूचना चली जाए।
1: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9,347 लाभार्थियों का चयन किया गया है। उद्योग सह खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने योजना के अंतर्गत आवेदकों का औपबंधिक चयन किया। अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद 3 किस्तों में लगभग 910 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें 50% राशि अनुदान और 50% राशि बिना ब्याज के ऋण के रूप में दी जाती है। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले के महसी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बलुआहा में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक को मामले की अगली सुनवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोकभवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी को कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। प्रोफेसर केसरी बिना कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। यह बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाह फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स,

0: पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पटना, गया और कटिहार समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान रोहतास का डेहरी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद का 41.5, छपरा का 40.2 और पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए भोजपुर जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 23 जून तक जारी रहेगा। प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक ही संचालित होंगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से मधुबनी जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर बलिराजगढ़ के व्यापक उत्खनन के लिए 10 वर्ष की परियोजना शुरू करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर श्री झा ने दरभंगा स्थित मिथिला शोध संस्थान को ज्ञान भारतम मिशन में शामिल करने का भी आग्रह किया। रेलवे ने वाराणसी मंडल को गोरखपुर कैंट पनियहवा रेलखंड के उनौला पिपराई स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य को लेकर 8 जून तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। इसके चलते नरकटियागंज गोरखपुर कैंट खंड की कई सवारी रेलगाड़ियां पूरी तरह रद्द रहेंगी। वहीं लालकुआं कोलकाता स्पेशल ट्रेन, दिल्ली मोतिहारी स्पेशल ट्रेन, दिल्ली सीतामढ़ी और गांधीधाम भागलपुर स्पेशल ट्रेन समेत 16 स्पेशल ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। इसके अलावा कटिहार दिल्ली एक्सप्रेस और गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस समेत 13 रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इधर रेलवे ने दानापुर मंडल के नवादा और बारसलीगंज स्टेशनों के बीच स्थित बाघी बरडीहा स्टेशन पर जमालपुर गया मेमू ट्रेन को 25 मई से 1 मिनट का ठहराव देने का निर्णय लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव चाय के टिकाऊ उत्पादन, उपभोग और व्यापार को बढ़ावा देता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। चाय का उत्पादन और प्रसंस्करण लाखों परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। चाय की उत्पत्ति 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और आज भी यह 1,30,00,000 से अधिक लोगों का भरण पोषण करती है। मधुबनी जिले में भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मानव तस्करी, मादक पदार्थों के सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, अतिक्रमण और जाली नोटों पर अंकुश सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में स्थानीय जिलाधिकारी आनंद शर्मा और नेपाल के सिराहा जिला के CDO सुरेंद्र पोडेल शामिल समेत दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भाग लिया। सारण जिले के छपरा में जनगणना कार्य में सहयोग नहीं करने पर जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत 106 पंचायत सचिवों पर ₹1,000 का अर्थदंड लगाया है। इस राशि की कटौती पंचायत सचिवों के वेतन से की जाएगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के डेल्टा रैंकिंग में सीतामढ़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर से दिसंबर 2025 की डेल्टा रैंकिंग में जिले ने कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्कृष्ट

प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। औरंगाबाद जिले में रिसियप थाना क्षेत्र के पहरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। औरंगाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मौके से सिलेंडरों के अलावा 90 गैस पासबुक, उज्ज्वला गैस चूल्हा तथा अन्य उपकरण बरामद किए गए। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना के नौबतपुर में सीडीपीओ कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार को 37,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। संतोष कुमार आंगनबाड़ी केंद्रों से अवैध वसूली के तहत यह राशि ले रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग आगामी 25 मई से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, तकनीकी संस्थानों में युवा पेशेवरों की नियुक्ति होगी। प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, गया से बैंकॉक के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान। दैनिक भास्कर लिखता है, यूपीएससी 2027 सिविल सेवा प्रीलिम्स 23 मई को। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 6ठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया। प्रदेश के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया, राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ।

0: watch for free.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
0: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोता, आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:06 हुए हैं। जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले शीर्ष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 9:10 पर हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका का समय होगा और आज के फनकार विविध भारती से सुनेंगे सुबह 9:30 पर। हिंदी समाचार सुबह 10 बजे। हिंदी कार्यक्रम में साहित्यिकी कार्यक्रम आज सुनेंगे महिलाओं को घरेलू हिंसा से कानून संरक्षण, वार्ताकार जनक राज किशोरी सुबह 10:05 पर। और कार्यक्रम भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का लोक माधुरी सुन पाएंगे सुबह 10:30 पर। भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स रसधार सुनेंगे सुबह 10:45 पर। पूर्वाहन के 11 बजे विविध भारती के कार्यक्रमों की तरफ चलेंगे और लौटेंगे पुनः आप सबों की सेवा में शाम 5:10 पर कार्यक्रम वंदन के साथ। युवा साथियों का कार्यक्रम युवमणि का समय होगा शाम 5:30 पर और भोजपुरी लोकगीत कार्यक्रम सुन पाएंगे शाम 6 बजे से। भोजपुरी बुलेटिन समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किए जाएंगे शाम 6:05 पर और किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे शाम 6:10 पर।

शाम 6:40 पर कार्यक्रम सांझ गीत का समय होगा। इसके अंतर्गत सुनेंगे कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत। गुड इवनिंग दोस्तों, संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम सुन पाएंगे 7:15 पर। और आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का समय होगा 7:25 पर। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम सुन पाएंगे 7:50 पर। और समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र सुनेंगे 8:45 पर। रात्रि 9:00 सुनेंगे भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। और गजलों का कार्यक्रम महफिल सुन पाएंगे 9:15 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन पाएंगे 9:30 पर। और हिंदी एल्बम सॉन्ग्स रसरंग सुनेंगे 10:00 से 10:30 पर। सुन पाएंगे कार्यक्रम चित्रपट तराने, इसके अंतर्गत सुनेंगे कुछ फिल्मी गाना। और अगले दिन के कार्यक्रम का विवरण सुनेंगे 10:55 पर। हिंदी समाचार का समय होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 11:00। अंग्रेजी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 11:05 पर रात्रि में। सभा का समापन 11:10 पर।

अभी आपने सुना आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:10 हुए हैं, सुनते हैं हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका।

कार्यक्रम गीत मालिका में अभी आपने सुना मजबूर फिल्म का ये गाना मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। कार्यक्रम का अगला गाना सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है, फिल्म है सिर्फ तुम।

कार्यक्रम गीत मालिका के आखिर में सुन लेते हैं सोनू निगम की आवाज में खूबसूरत सा गीत। समीर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत है, फिल्म है सोल्जर।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
4: अभी हमारे श्रोता हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका सुन रहे थे, आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 MHz पर। सुबह के 9:30 होने वाले हैं, अगला प्रसारण सुनेंगे विविध भारती से थोड़ी देर में। पुनः हाजिर होंगे आप सबों के सेवा में सुबह के 10:05 पर कार्यक्रम हिंदी साहित्य की कार्यक्रम के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी
0: गीतकार
1: पूरे कान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता ना ही उम्र का मोहताज होता है प्यार सर्वकालिक होता है सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है, और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats, yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test.
0: ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: शादी।
1: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड।

आदिति चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित एक था।

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थी रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्री।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

0: दोनों पक्षों ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनाधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्ट मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह लगभग इसी समय लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार को कांग्रेस के 5 विधायक, वीसीके, आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम के 2-2 विधायक और एसपी वेलुमणी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों से पहले हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम। साहित्य की विषय होगा महिलाओं को घरेलू हिंसा से कानूनी संरक्षण। वार्ताकार हैं जनक राज किशोरी। तो आइए सुनते हैं जनक राज किशोरी जी से एक हिंदी वार्ता।
2: यह विडंबना है कि हम एक तरफ तो नारी रूप की पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। हम माँ को इतना आदर देते हैं कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसे धरती माता कहते हैं, जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं उसे मातृभूमि कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी माँ, जिसने अपने कोख से 9 महीने तक अपने जिगर का खून पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया, सभ्यता और संस्कृति की बातें बताई, पढ़ा लिखा कर योग्य और काबिल बनाई, जिसके नाम की रोशनी से

सारा विश्व जगमगा रहा है, लेकिन आज वही माँ एक भिखारिन की भांति दर दर की ठोकरें खा रही हैं। वही औरत जिसने आध्यात्मिक गुरु, जगत गुरु, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता को जन्म दिया, आपको योद्धा बनाया, संघर्षों से लड़ना सिखाया, साहस दिया, उसी औरत पर आपका दुस्साहस बढ़ता नजर आता है। उसी औरत पर शस्त्र उठते आए दिन देखा जाता है। आए दिन परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशित होते हैं, अव्वल नंबर पर महिला ही नजर आती है। घर में अगर बेटा प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, न्यायिक पदाधिकारी बन गया, तो उसकी अहमियत, उसके लिए दहेज की रकम भी बढ़ा दी जाती है। दूसरी तरफ महिला कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, पुरुष वर्ग अपने पुरुष होने के दम भरना नहीं भूलते हैं, वहाँ भी उनका शोषण किया जाता है। आए दिन यह सुनने में आता है कि आप औरत हैं, क्या कर सकती हैं, ऐसा कार्य आपसे नहीं हो सकता है, ये कार्य आपके समर्थ से परे है, यह साहस भरा कार्य औरतों से नहीं हो सकता है। औरत की बुद्धि कितनी होती है, कितना भी पढ़ लिख लो तो हो औरत, वही तुलसीदास की ताड़न की अधिकारी इत्यादि बातें सभ्य समाज में, जहाँ यह कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो फिर उस गांव गंवी की हालत क्या होगी जहाँ कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। वहाँ दहेज कम लाने का ताना, बेटा न जनने का ताना, कुरूप होने का ताना, मायके भेज देंगे का ताना, घर से निकाल देने का ताना आए दिन सुनना पड़ता है। बाल विवाह, अशिक्षा, शारीरिक और मानसिक क्लेश, दहेज का दंश सब नारी ही सहन करती है। इसलिए महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। सबसे पहले दहेज निवारण अधिनियम 1961 बनाया गया। चूँकि बेटा अगर शारीरिक रूप से अपूर्ण भी है तो उसे घी का लड्डू बताया जाता है। हिंदू समाज में तो पिंड यानी पूर्वजों के मरने के बाद मुखाग्नि और पिंड का अधिकार सिर्फ पुरुष को ही दिया जाता है, इसलिए भी उनकी अहमियत कुछ अधिक ही बढ़ जाती है। कुरूप और एक आँख वाले लड़के भी सुंदर और सर्वगुण संपन्न सुशील लड़की की शादी भी कई बार तभी होती है जब कुछ दहेज की रकम दे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, जो नौजवान दहेज की शर्त पर ही शादी करता है वह अपनी शिक्षा, अपने देश और नारी जाति का निरादर करता है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक बातों की अपेक्षा दहेज निवारण अधिनियम 1961 का समाज पर बहुत असर हुआ। इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि विवाह के दोनों पक्षकार में से कोई भी पक्षकार दहेज लेता है या देता है तो उसे 5 साल की सजा और 15,000 रुपये या दहेज मूल्य के बराबर तक जुर्माना हो सकती है। इस अधिनियम के आने के बाद लोगों में कुछ चेतना आई, औरतों को कुछ साहस मिला, लेकिन महिला उत्पीड़न जारी रहा। अब भी लोगों की मानसिकता शांत नहीं हुई। नाते रिश्तेदार द्वारा दहेज कम लाने की बातें हो, या भोजन न मिलने की बातें हो, या बीमारी का इलाज न कराने की बातें हो, मायके में शादी के बाद बरसों तक बेटी अपने माँ बाप के घर पड़ी रहने की बातें हो, यह एक प्रचलन सा समाज के सामने उभर कर सामने आने लगा। इस संदर्भ में मुझे मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति याद आ रही है, आंचल में है दूध, आँखों में है पानी, हाय नारी तेरी यही कहानी। समय के अंतराल में एक घर की आवाज़, एक नारी की आवाज़ समाज और परिवार के नारियों की आवाज़ के रूप में परिवर्तन होकर बुलंद हुई और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिससे वह घर परिवार में सुरक्षित रह सके और अत्याचार करने वाले अत्याइयों को सजा मिल सके। इसके लिए भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 498A का प्रावधान किया गया, जिससे यह स्पष्ट रूप में वर्णित है कि जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। क्रूरता से तात्पर्य यह है कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री की आत्महत्या करने के लिए करे, या उस स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ्य को जो शारीरिक हो या मानसिक गंभीर क्षति या खतरा करने की संभावना हो, या

स्त्री को या इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को या किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए, या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है। इस तरह नारियों को संरक्षण देने के लिए समय समय पर कानूनी पहल किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी जोड़कर बनाया गया, जिससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 बी जोड़कर सशक्त बनाया गया। भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 304 बी में यह उल्लेखित है कि जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जा सकती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या उसके नातेदार उसके मृत्यु के लिए कारित करने वाला समझा जाएगा। जो कोई इस तरह की मृत्यु कारित करेगा वह कारावास, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु वह आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। समय बीतने के साथ और महिलाओं को अधिक बेहतर संरक्षण देने के लिए एक और अधिनियम बनाया गया, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के नाम से जाना गया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में भी संशोधन कर नारियों को संपत्ति में समान अधिकार देने की बात सामने आई है, जहां उसे लड़के के बराबर शेयर मिलने का प्रावधान है। कानून द्वारा इतना संरक्षण मिलने के बाद जरूरत इस बात की है कि जो भी संरक्षण कानून द्वारा प्राप्त है उसका पूरा पूरा लाभ उठाया जाए। अगर हमारा दायित्व परिवार और समाज में सेवा करना है तो एक पहलू सम्मान प्रतिष्ठा और सेवा लेना भी है। हम अपने अधिकार को जानें, समझें और अपने मार्ग को खुद प्रशस्त करें और दुनिया को नई रोशनी दें, नई ताकत दें। सरोजिनी नायडू ने कहा था, जब भी अत्याचार होता है आत्मसम्मान इसी में है कि उठो और कहो कि यह अत्याचार आज में ही खत्म करना होगा, न्याय पाना मेरा हक है। जिस तरह सती प्रथा के रिवाज को हमने इतिहास के पन्नों में दफन किया है, उसी तरह अब वह समय आ गया है हम महिला उत्पीड़न, चाहे बाल विवाह हो, दहेज का रिवाज हो, भ्रूण हत्या, आर्थिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक शोषण हो, हम दफन कर दें। हम जानते हैं सफर बहुत लंबा है, लेकिन 1000 मील का लंबा सफर पहले कदम से शुरू होता है। हम महिलाओं की पुकार है, बदलाव लाने की कोशिश करें, बदलाव की मांग करें, खुद अपनी मानसिकता बदलें। अक्सर महिला द्वारा ही महिला उत्पीड़न की बातें सामने आती हैं। अंत में मैं सभी श्रोता बंधुओं से यह कहना चाहूँगी, जहाँ भी और जैसे भी हो सके अपनी आधी आबादी जहाँ बदलाव की ज़रूरत है जागृत इंसान बनाएंगे। औरतों का कद्र करना, शक्ति और आज़ादी भरा जीवन देने का हक न सिर्फ औरतों के लिए बल्कि एक सभ्य समाज की पुकार है। जिस तरह जुल्म और अत्याचार हमारे जीवन में जहर बनाकर लौटेगा, उसी तरह प्यार और हमदर्दी हमारे जीवन में खुशी और शांति का लहर बनकर लौटेगा। मैं महिला श्रोताओं से भी यह जरूर कहना चाहूँगी कि सरकार समाज और कानून द्वारा प्राप्त संरक्षण का दुरुपयोग ना करें। आप प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, आप जगत जननी हैं और आपकी सूझबूझ शांति में ही समाज और परिवार का कल्याण है। एक बात और बताना चाहते हैं, जो भी घरेलू हिंसा से पीड़िता महिला हैं वो थाना जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अगर थाना प्रभारी आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देता है तो आप उच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक के पास इस बात का इन्फॉर्मेशन कर सकती हैं, या न्यायालय में आकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास सीधे शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं के संरक्षण के लिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। जरूरत इस बात की है कि आप सरकार द्वारा और समाज द्वारा प्राप्त संरक्षण

0: सदुपयोग करें।
1: अभी आपने सुना महिलाओं को घरेलू हिंसा से कानूनी संरक्षण कैसे करें। वार्ताकार थी जनक राज किशोरी। अब श्रोताओं सुनेंगे एक कहानी, गंगा। कहानीकार हैं विनय कुमार विनय। तो आइए सुनते हैं विनय कुमार विनय से एक कहानी, विषय है गंगा।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन
3: मनुष्य एक अजीब सी बेचैनी थी उसके मन में, हो भी क्यों नहीं,

अजीब सी बेचैनी थी उसके मन में, हो भी क्यों नहीं। राजीव पहली बार जो शहर जा रहा था, दूर दूर बहुत दूर। माँ कौशल्या अपने इकलौते पुत्र को अपने से दूर देखना नहीं चाहती थी, लेकिन राजीव के पिता जसवंत सिंह के कठोर फैसले के आगे बाध्य थी वह। उसके मुंह से निकली रोबीली आवाज अभी भी उनके कानों से गूंज रही थी, कौशल्या ममता की छांव में संतान के जीवन नहीं सवरते, सोना को अगर चमकना है तो उसे आग पर तपना ही होगा। स्टेशन से गाड़ी खुल चुकी थी। राजीव खिड़की के पास बैठे आंखें बंद कर मन ही मन कुछ सोच रहा था, शायद शहर वाले स्टेशन पर उतरे तो कहाँ जाए, क्या करें वगैरह। उसे तो बस यही याद है कि SS कॉलेज जाना है, फिर फुआ फूफा के घर, बस धीरे धीरे सब इंतजाम हो जाएगा। गाड़ी छोटे बड़े स्टेशनों पर ठहरते चलते लगभग 8 घंटों के बाद राजीव के मंजिल पर पहुंच गई। स्टेशन काफी बड़ा था, भीड़ इतनी कि पैर रखने की जगह नहीं, काफी शोरगुल। राजीव जैसे तैसे स्टेशन से बाहर आया, भौचक एक किनारे खड़ा था वह। कहां जाएं, क्या करें। स्टेशन के बाहर टमटम वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले चिल्ला रहे थे। राजीव खड़े खड़े सबको सुन रहा था, लेकिन टमटम वाला चिल्लाया, आओ भाई धर्मशाला रोड नागर वाली हवेली, कचहरी रोड SS कॉलेज, आओ आओ भाई आओ आओ। टमटम वाले के मुंह से SS कॉलेज का नाम सुनते ही राजीव के चेहरे पर खुशी की लकीरें खींच गई। वह टमटम के नजदीक गया। टमटम वाले ने पूछा, कहाँ जाना है बाबू। SS कॉलेज, बैठो बैठो तुरंत चलते हैं, बस एक ही एक सवारी और। टमटम वाले ने पुनः चिल्लाना शुरू किया, SS कॉलेज चलोगे बाबा, बैठो बैठो जल्दी करो। बस एक ही सवारी की कमी थी। टमटम वाला उस लड़की को बैठाते हुए स्वयं भी हड़बड़ी में बैठ गया। एक चाबुक लगते ही टमटम गंतव्य की ओर चल पड़ा। टमटम वाला चाबुक पर चाबुक मारता और थोड़ा घोड़ा उसी रफ्तार से दौड़ता, राजीव से देखा नहीं गया। राजीव ने टमटम वाले से कहा, बाबा जब घोड़ा दौड़ता ही है तो इतना चाबुक फटकारने से क्या। इस बात पर वह लड़की हंस पड़ी। टमटम वाला पीछे मुड़ा और राजीव को देखा। चाबुक को किनारे रखते हुए टमटम वाले ने कहा, बेटा बड़े दयालु लगते हो, लो रख दिया चाबुक किनारे, अब नहीं। लड़की ने हंसते हुए कहा, बाबा लगता है ये साहब शहर में पहली बार आए हैं। टमटम वाले ने स्वीकृति में हंसते हुए अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद टमटम वाले ने कहा, हाँ भाई SS कॉलेज। SS कॉलेज के लिए बस दो ही सवारी थी, दोनों उतर गए। कितने पैसे हुए, राजीव ने पूछा। 10 रुपये दे दो बाबू। 20 रुपये दे रहे हो, टमटम वाले आश्चर्य से पूछा। इनका भी हो गया, राजीव ने सहायता से कहा। लड़की ने कहा, नहीं नहीं मैं अपना दे रही हूँ। टमटम वाला राजीव को 10 रुपये लौटाते हुए अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। दोनों कुछ दूर तक चुपचाप चलते रहे, लेकिन लड़की ने सन्नाटा तोड़ते हुए राजीव से पूछा, दाखिला लेना है क्या। राजीव ने दबी जुबान से कहा, हाँ। कहाँ से आए हैं आप। विशंभरपुर से। आपका शुभ नाम। राजीव कुमार। और आपका नाम। राजीव ने संकोच मन से पूछा, गंगा। ओह कितना सुंदर नाम है आपका। इस बात पर गंगा मुस्कुरा पड़ी। अच्छा तो गंगा जी आपका घर। मेरा तो घर इसी शहर के लाल कोठी मोहल्ले में। इसी तरह बात करते करते दोनों कॉलेज के कार्यालय के नजदीक कब पहुंचे पता ही नहीं चला। कॉलेज परिसर में चहल पहल काफी थी, कोई दाखिला लेने में व्यस्त था तो कोई क्लास करने में। दाखिला लेने में गंगा ने राजीव की अच्छी मदद की। पता पूछते पूछते राजीव अपने फुआ के घर पहुंच चुका था। राजीव को यह समझ थी कि मेहमानवाजी 1-2 रोज के लिए ही होती है। राजीव अपने ठिकाने की खोज में निकल पड़ा और जल्द ही उसे ठीक

थाना मिल भी गया। अपनी पत्नी कौशल्या को उदास मन को देखते हुए जसवंत सिंह ने कहा, कौशल्या डॉक्टर अगर जख्म से मोहब्बत करने लग जाए तो जख्म क्या खाक ठीक होंगे, और अपने बेटे की भलाई चाहती हो तो ममता से मुंह मोड़ो। कौशल्या चुपचाप उनकी नसीहत सुन रही थी, लेकिन नसीहत सुनते सुनते सब्र का बांध टूट गया और बोल पड़ी, वैसे आप कुछ भी कह लीजिए, यह घर अब मुझे काट रहा है। उफ, तुमको समझाना आसमान से तारे तोड़ लाने के समान है। कहते हुए जसवंत सिंह बाहर निकल गए। दिन महीने साल बीतते गए, घर भी आना जाना होता रहा राजीव का। माँ ने भी वक्त से समझौता कर लिया था, इसी काले में अब एमए का छात्र था वह। गर्मी की छुट्टी के बाद फिर वही चहल पहल। राजीव ने नजदीक से गुजरती हुई गंगा को पुकारा, गंगा। गंगा रोकर सर झुकाए बोली, बोलिए राजीव बाबू। गंगा, इस बात से मैं काफी दुखी हूँ कि आप अकेली बैठी रहती हैं, क्या आपको आपकी कोई सहेली नहीं? नाम गंगा और आप इस तरह अछूत की तरह रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। राजीव बाबू, जिस दिन आप मेरी हकीकत से रूबरू हो जाएंगे, आपके लिए भी यह गंगा अछूत हो जाएगी। इतना कह गंगा सर झुकाए चल पड़ी। अगर पहली मुलाकात सुखद हो तो वह किसी की भी जिंदगी के लिए धरोहर हो जाती है। कई दिनों से गंगा कॉलेज नहीं आ रही। राजीव जब गंगा को नहीं देखता तो बेचैन हो उठता। आज गंगा से मिलने को आतुर था वह। आखिर गंगा कॉलेज आती नहीं तो क्यों? जुआ मन में भावनाएं जब उमड़ती हैं तो समाज के मजबूत से मजबूत बंधन भी टूटकर बिखर जाते हैं। उसका पता था राजीव के पास, लाल कोठी मोहल्ला, होल्डिंग नंबर 72। महल्ले का अजीब वातावरण, घुंघरू की आवाज, तबले की थाप, समझते देर नहीं लगी राजीव को, यह मोहल्ला तवाइफों का है। गंगा के कथन गलत नहीं थे। खैर, मिल गया होल्डिंग नंबर 72। वहां के पान वाले दुकानदार से पूछा, भाई साहब यहाँ गंगा रहती है? दुकानदार ने राजीव को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बस इसके ऊपर चले जाओ। राजीव ऊपर चढ़ता है और उस कमरे में प्रवेश करता है जहां गंगा की माँ मरण सजा पर पड़ी है। राजीव को देखते ही गंगा की माँ बोली, कौन हो तुम बेटा? राजीव। गंगा की माँ उठने का असफल प्रयास करते हुए खुशी से, राजीव बेटा, बस तेरे ही दर्शन के खातिर अब तक जिंदा हूं बेटा। तेरे चित्र तेरे नाम की रोज पूजा करती है गंगा। गंगा मौजूद वहां अपनी माँ की सेवा में लगी है, शायद इसीलिए कॉलेज में ही आ रही वह। राजीव को वहां देखकर गंगा भी अवाक। वह बोली, राजीव बाबू आप यहाँ? आपको कई दिनों से देखा नहीं, इसीलिए चला आया। तभी गंगा की मां ने भर्राई आवाज में कहा, बेटा शहर का यह मोहल्ला बदनाम है जरूर, लेकिन इस बदनाम गली में भी कभी कभी ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। इधर आओ बेटा। राजीव गंगा की माँ के नजदीक जाता है। वह राजीव का हाथ पकड़कर कहती है, बेटा मेरी यह गंगा पवित्र है, अगर इसे तुम जैसे ईश्वर का सहारा नहीं मिला तो यह गंगा भी मैली होने से नहीं बच पाएगी। इसलिए बेटा मैं गंगा का हाथ तुम्हारे हाथ सौंप रही हूँ, इसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है बेटा। इतना कह वह आंखें बंद कर लेती है तथा उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। तब गंगा सर झुकाए बोली, माँ यह गंगा कितनी पवित्र क्यों न हो, लेकिन समाज को यह गंगा स्वीकार नहीं। यह गंगा किसी को स्वीकार हो या न हो, मुझे स्वीकार है। गंगा का हाथ पुनः लेते हुए राजीव ने कहा। कोर्ट मैरिज होते ही राजीव गंगा को अपने किराए वाले घर में ले आया। सब ठीक ठाक। खट खट खट। कौन? अंदर से आवाज आई। दरवाजा खोलो तो सही, जसवंत सिंह ने कहा। गंगा ने दरवाजा खोला और उनसे पूछा, आप कौन? जसवंत सिंह इधर उधर देखते हुए बोले, बेटा लगता है ये शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूं, मेरे बेटे राजीव का डेरा कहीं इधर ही था। गंगा को समझते देर न लगी। वह बोली, पहले आप अंदर तो आए, कितनी दूर से आए हैं आप लोग? गंगा दोनों अतिथि को अंदर ले आती हैं, कुर्सी पर बैठाती है, थाल में पैर धोती है, तत्पश्चात पैर पूजती है तथा जसवंत सिंह एवं कौशल्या दोनों एक साथ गंगा को सदा सुहागन तथा आजीवन सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। गंगा भी आशीर्वाद पाकर धन्य उठी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जसवंत सिंह ने पूछा। गंगा। कौशल्या खुशी से, कितना सुंदर नाम है जी। बिल्कुल जैसा नाम वैसा गुण। जलपान के पश्चात जसवंत सिंह एवं कौशल्या जाने लगते हैं। जाने के क्रम में जसवंत सिंह ने कहा, अच्छा तो बेटा हम अपने पुत्र राजीव के पास जाना चाहते हैं। गंगा पुनः दोनों का पैर छूकर प्रणाम करती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वह क्या करे। पता नहीं हकीकत जानने के पश्चात ऊंट किस ओर करवट ले ले, कैसे कहे वह यह राजीव का डेरा है। सदा सुहागन रहने के आशीर्वाद पाने वाली यह गंगा उनकी बहू है। असमंजस की स्थिति, समझ में नहीं आ रहा आखिर गंगा कहे क्या और करे क्या। जो ही दोनों चलने को होते हैं राजीव आ जाता है। अपने माता पिता को देख अवाक, काटो तो खून नहीं। राजीव अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रख देता है। जसवंत सिंह का

0: प्राण राजीव के आंसुओं से भींग जाते हैं। कौशल्या, हम गलत जगह नहीं सही जगह आए हैं। जसवंत सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जसवंत सिंह ने राजीव को उठाते हुए कहा, राजीव बात क्या है? हकीकत से रूबरू होना हमारा फर्ज है। यह गंगा कौन है? गंगा भी भय से हाथ जोड़े कांप रही थी। राजीव ने आज तक अपने पिता के सामने जुबान नहीं खोली थी। इस परिस्थिति में उनका कैसे सामना करे वह? फिर भी सर झुकाए दबी जुबान से कहा, आपकी बहू। जसवंत सिंह आश्चर्य से, हूं आपकी बहू? मतलब तूने इस गंगा से शादी कर ली है? जसवंत सिंह ने कड़कते हुए आवाज में चिल्लाया, कौशल्या देखिए अपने आपने अपने बेटे की करतूत। यहां पढ़ने आया था लेकिन तुम्हारे लाल प्यार ने इसे कितना बिगाड़ कर रख दिया। वाह क्या बात है, भीलों ने मिलकर बांट लिए बन, राजा को इसकी खबर तक नहीं। राजीव को देखते हुए जसवंत सिंह गुस्से में चिल्ला उठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों के सामने? तुमने खानदान की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। कुल खानदान की मर्यादा को खाक में मिला दिया तूने। कसूर गंगा का नहीं, तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। कौशल्या हाथ जोड़े बोली, देखो जी गलती तो बच्चे ही करते हैं ना। गलती करने पर औलाद को कोई थोड़े ही काट कर फेंक देता है। मैं हाथ जोड़ती हूं, इन्हें क्षमा कर दो। गुस्से में जसवंत सिंह ने कहा, कौशल्या गलती अगर क्षमा योग्य हो तो किया जा सकता है, लेकिन यह गलती अक्षम्य है। सजा तो दोनों को मिलनी ही चाहिए। दोनों चलो इधर। लेकिन दोनों टस से मस नहीं। जसवंत सिंह पुनः चिल्ला उठे, दोनों चलो इधर। डरते हुए हाथ जोड़े दोनों जसवंत सिंह एवं कौशल्या के नजदीक गए। जसवंत सिंह राजीव के गाल को छूते हुए कहा, बेटा तूने किसी का उधार किया है। पारस अगर लोहे को छू ले तो वह भी सोना हो जाता है, और हीरे भी मिलते हैं तो पत्थर के खदानों से ही। इसलिए हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन हाँ बगैर माता पिता के आशीर्वाद के जीवन सफल नहीं होता। दोनों माता पिता के चरणों में अपना माथा टेक कर आशीर्वाद पाते हैं। कौशल्या गंगा को उठाकर गले लगाते हुए बोली, सदा सुहागन रहो बेटी। जसवंत सिंह ने भी राजीव को गले लगाते हुए कहा, जुग जुग जियो बेटा। जसवंत सिंह एवं कौशल्या के कंधे इन दोनों की आंसुओं से भींग चुके थे।
1: अभी आपने सुना विनय कुमार विनय से कहानी गंगा, कार्यक्रम हिंदी वार्ता में। श्रोताओं, सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब हम सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी थोड़ी देर में।

अब हम सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम का पहला गीत मदन राय की आवाज़ में, दीप मुरादाबादी ने इसे लिखा है, भरत शर्मा व्यास ने संगीत दिया है और एल्बम है बलमा गईले झरिया।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश बलम गिले झरिया एल्बम से ही मदन राय की आवाज में ही। इस पारंपरिक गीत को भारत शर्मा व्यास ने संगीत दिया है।

मदन राय के गाए इन्हीं भोजपुरी एल्बम लोक गीतों के साथ कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार। इसके अंतर्गत सुनेंगे कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं आलोक रंजन की आवाज़ में। किशोर दुलरुआ ने इस गीत को लिखा है, अशोक कुमार दीप ने संगीत दिया है और एल्बम है नजर के सामने सनम।

निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

अभी आपने सुना नज़र के सामने एल्बम से आलोक रंजन को। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अभय लाल यादव के आवाज़ में खूबसूरत सा गीत है, सुरतिया न भूले रजऊ एल्बम से। इस गीत को लिखा है अभय लाल यादव ने ही, संगीत दिया है अजय लाल यादव। आइए सुनते हैं सुरतिया न भूले रजऊ।

श्रोताओं, अभय लाल यादव के गाए इसी भोजपुरी एल्बम सॉन्ग के साथ कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूर्वाहन के 11 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण विविध भारती से।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजों में, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ ये गाना। संगीत लेस्ली लेविस और हरिहरन का, एल्बम का नाम आत्मा।

अलीशाज़ लव नोट्स ये एल्बम का नाम है। अलीशा की आवाज़, नितिन रायकवार के बोल और संगीत है संदीप चौटा का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शान, सुनीता राव और साथियों की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ ये गाना, अनु मल्लिक का संगीत, फिल्म का नाम अशोका।

21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: पी बलराम की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, शाहीन इकबाल के बोल, सुजीत शेट्टी का संगीत, एल्बम था ख्वाबों में।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन

0: चयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला जो गीत है, जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का गाना बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान की आवाजें, प्रवीण भारद्वाज का लिखा हुआ गाना, संगीत आनंद राज आनंद का।

0: दोस्तों आज है सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषा है उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में। तो सुनिए, आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए। खुद्दार फिल्म का गाना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।
1: तने प्रेम करूं छो छो छो, बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हाके भालो बाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनु प्यार करना, तेरे जियो नयो लवड़ी ओ साथी हो निबलिए अंग्रेज।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: ஐயோட அம்ம முத்துக்கோழி கோவாரிஹடா
1: அம்மா முத்துக்கோழி கோவாரிஹடா
2: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
3: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: जरा सा आ जरा सा पी दो ओ जालिमा मर जियो।
1: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल और रविशंकर का संगीत।
2: मैं उठते ही लो अरे पुरवा के झोंकवा में

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत की जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे गाने आपने हमें लिख भी भेजे हैं, जिनका अंदाजा आपने लगाया है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख भेजे। बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं, जिसे पाके तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है, तो मेरे हम सफर तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के पार चुपचाप मेरी बात तुम्हारे कानों में पड़े तो उस अनोखी रात को याद करना। तुम्हारा आना, तुम्हारी याद का आना, प्यार का रंगीन जमाना, ठंडी हवा के झोंके के समान सुकून देता है। अगर उस तरह के बादल फिर से आकाश में छा जाएं जब हम पहली बार मिले थे, तो समझना किसी ने दिल से याद किया है। इनमें जो शब्द हैं जिनके गाने आज के कार्यक्रम में हमने शामिल करना चाहा है, तो उन पर हमने थोड़ा स्ट्रेस भी दिया है।

तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और अपनों की याद, उनको खत लिखना यह बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानो प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बसी कोई सबसे खूबसूरत और पुरानी याद हो। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार इकरार और स्वीकार से ओतप्रोत है, जहां खतों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों, उमंगों और तरंगों का ताना बाना बुना गया है। सात्विक प्रेम में दिलों से निकलती बहुत सुंदर प्रस्तुति है यह। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना सुनवाते हैं, नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये, शैलेंद्र, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। इसके अलावा कौन से साल की ये फिल्म है, अगर ये भी आप हमें बता सके तो जरूर बताइए।

सवेरा फिल्म का गाना आपने सुना, 1958 1958 की ये फिल्म है। मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक साथी लिखते हैं कि नदी केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, नदी प्रेम में पड़े प्रेमियों की भावनाओं को प्रगाढ़ कर देने वाली, मन को निर्मलता और सुकून देने वाली एक सजीव साथी है। नदी की निश्चलता और निरंतरता को समय या फिर जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। नदी बहती जलधारा लहरें प्रिय के साथ गुजारे पलों को याद दिलाया करती है। इसके अलावा आज एक दिवस है, चाय दिवस। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख

0: भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है, उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आता है, वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताजा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है, बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से, कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए, और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीजें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं, क्या किसी का साथ होता है, या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट की या इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हवा के साथ साथ। जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें ही, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, आरडी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।
1: अरे ए, ए,

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफर में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है, लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूं और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूं, घर की चाय जो मेरी हमसफर यानी कि धर्म पत्नी ने बनाकर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूं और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा जरूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफर में चाय का जिक्र हो तो सफर का मजा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं, मजा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं, चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

बन फूल, इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई खास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हो तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी, और सबसे ज्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती लेकिन वो बातें हमें सबसे ज्यादा ठंडक देती है। चलिए धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताएं।

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफर की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफर के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो कोई शीतल बयार ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुने पुरानी मीठी यादों को ताजा कर रही है, जिसमें उदास दोपहर भी संगीत और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना। लता जी की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल है, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्माया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफर कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आरडी बर्मन के गाने क्या का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस जमाने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूंछ पकड़कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि

हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक देती? ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं। जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल विश्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जिन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहां की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है, बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाजा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्मपत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छूमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक हाँ, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारी विविध भारती से गानों की ठंडी बौछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफर हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह, सचमुच बहुत तेज गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ दो मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज, इसमें संगीत किसका है?

भाई बहन फिल्म का गाना, इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिखने की सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टाने, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय, सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी और ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सके, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताजा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफी, आशा भोंसले की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं सुनने तो इससे भी ये ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई है। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुंचा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है तो चलिए पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं हेमंत कुमार और लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफर यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई है। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोक भवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी को कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। इधर लोक भवन ने 6 विश्वविद्यालयों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए 20 जून तक आवेदन मांगे हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 24 मई को होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 3 नए परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। आयोग के अनुसार केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही देश भर में केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए कुल 8,19,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का दिन देशभर में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम

0: कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया है कि समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा समेत अन्य अधिकारियों और कर्मियों ने आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ ली। काल बैशाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, कटिहार समेत राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि इस दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। इधर दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पटना, गया, नालंदा, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अधिकतर स्थानों पर लू की स्थिति बनी हुई है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान और उमस के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुपौल जिले के वीरपुर में सैलेशपुर चौकी के पास एसएसबी जवानों ने एक नेपाली महिला के पास से हिरण का सिंह बरामद किया है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अररिया जिले के पलासी प्रखंड के 5 पंचायतों में आज जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। मधुबनी जिले के खजौली रेलवे स्टेशन के करीब जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन में ट्रैक पर गिरी एक मोटरसाइकिल फंस गई। ट्रेन के चालक की सूझबूझ के कारण हादसा होने से बच गया। रेल अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नवादा जिले के गोविंदपुर स्थित ककोलत जलप्रपात में प्रवेश और पार्किंग शुल्क को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने, उनकी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए यह बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मीटा, गूगल और टेलीग्राम समेत अहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इस दौरान मुकाबला जाति इम्तहान से मुतल्लिक गलत इत्तलात की बढ़ती तशहीर पर तशवीश जाहिर की गई। ये मीटिंग 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तहान से कबल काफी अहम समझी जा रही है। एक दीगर मीटिंग में वजीर तालीम ने नीट यूजी दोबारा इम्तहान के गैर जानबदाराना और बेहतर इनाकात को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और पुख्ता इंतजाम की जरूरत पर जोर दिया। मगध यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को फौरी असर से हटा दिया गया है। लोक भवन ने इससे मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर डॉ दिलीप कुमार केसरी को वाइस चांसलर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर लोक भवन ने 6 यूनिवर्सिटियों ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर श्री दरभंगा संस्कृत विद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बीआर अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी और जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा में तकरूरी के लिए 20 जून तक दरखास्तें तलब की हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने 24 मई को होने वाले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिमिनरी इम्तहान के लिए 3 नए मराकज शुरू किए हैं। कमीशन के मुताबिक सेंटरों पर भीड़ कम करने के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में इम्तहानात मराकज कायम किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे मुल्क में सेंटरों की कुल तादाद 83 हो गई है। कमीशन के चेयरमैन डॉ अजय कुमार ने कहा कि यह यकीनी बनाया जा रहा है कि माजूर उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा इम्तहान मराकज अलॉट किए जाएं। इस साल सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी इम्तहान 2026 के लिए कुल 8,19,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। मुल्क आज साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस दिन साल 1991 में साबिक वजीर आजम को दहशतगर्दों की साजिश का शिकार हो गए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में साबिक वजीर आजम को खिराज अकीदत पेश किया है। पटना वाकई कांग्रेस सदर दफ्तर सदाकत आश्रम में मुनक्किद ताजियती जलसे में पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान ने साबिक वजीर आजम के मुजस्समे पर गुलपोशी की आज का दिन पूरे मुल्क में दहशतगर्दी मुखालिफ दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों को दहशतगर्दी और तशद्दुद की सकाफत से दूर करना है। इस मौके पर हलफ बरदारी तकरीब समेत कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। हमारे औरंगाबाद नवानिगार ने बताया कि कलेक्ट्रेट में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान जिला मजिस्ट्रेट अभिलाषा शर्मा समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने दहशतगर्दी और तशद्दुद

0: का डट कर मुकाबला करने का हलफ लिया। कल बैसाखी के असर से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत रियासत के शुमाली इलाकों में बेशतर मकामात पर आंधी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि इस दौरान गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर न रहें। इधर जनूबी बिहार के बेशतर हिस्सों में शिद्दत की गर्मी का कहर जारी है। पटना, गया, नालंदा, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल समेत रियासत के जनूब मशरक और जनूब वस्त इलाकों में बेशतर मकामात पर लू की सूरत हाल कायम है। पटना और उसके नवाही इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत और उमस के सबब आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। सुपौल जिला के वीरपुर में शैलशपुर चौकी के करीब एसएसबी के जवानों ने एक नेपाली खातून के पास से हरन का सिंग बरामद किया है। मुलजिम खातून को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अररिया जिला के पलासी ब्लॉक की 5 पंचायतों में आज जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में दर्ज फहरिस्त दर्ज फहरिस्त कबाइल बरादरी के लोगों की सेहत जांच की गई और मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों की जानकारी दी गई। मधुबनी जिला के खजौली रेलवे स्टेशन के करीब जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन में ट्रैक पर गिरी एक मोटरसाइकिल फंस गई। ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा होने से बच गया। रेलवे अफसरान ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक हवलदार इंस्पेक्टर के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी।

आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध
1: करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में अब 4 महिला कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
3: यह स्मारक

0: करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत एवं कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan with its long time
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: इंडिया इज रिसेंटली लॉन्च। भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
5: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में

0: फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जनकल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार

0: छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती

0: कर आ रहा है, लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनिया।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली। कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप
1: चंचल जी? और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
0: भी देखिए आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहां अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने,
1: लेकिन इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
0: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहां रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है,
1: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
0: हाँ,
1: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
0: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
1: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है हर एक को होता है।
0: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई
1: वो उन्हें अपना बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
0: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राही बाई सुमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता यानी कि सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई, चाय दिवस, चाय की चुस्कियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
1: देश ऐसा यही है भारत जहां पे इतनी 50 आप सोच लीजिए गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय
0: चाय

0: चाहिए।
1: चाय के बिना गुजारा नहीं है।
0: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहां एक पांचवी चीज होती है, वो चाय होती है। दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो है वो अपना आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में
1: बात करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
0: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
1: जी और बिल्कुल, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
0: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
1: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
0: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
1: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है। और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपड़े की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपड़े का अपना यहां पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी उनका विवाह हो गया था। और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है।
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान आसुन पण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल। राहीबाई पोपड़े जो है वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल। और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला। और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की। और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वासपूर्वक कह सकती हैं कि

0: की फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं, हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
1: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बावलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
1: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
0: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है। और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की प्याली अगर मिल जाए,
1: ना तो बस ऐसा लगता है कि अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। हाँ। ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने दिमाग को ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है, आरती हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है ना वो वर्ल्ड फेमस है।
1: अगर आप किसी के घर गए चंचल जी, अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन आप घर के उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, चाय बस चाय नहीं पिलाई तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती है।
1: सच में बहुत ज्यादा।
0: और पौराणिक कथाएं है ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्यारी चाय अगर दोस्तों के साथ हो तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना।
1: वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं, चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए, तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानी, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं सदियों से बहुत तरह तरह

0: के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं।

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कितना तौहीन हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है. साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कप तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं.
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों गया आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ है, ये तो हम कहेंगे.
0: चाय की बात.

0: की बात ना हो ऐसा कैसे होगा।
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी।
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे। और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देशों में होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी प्याली लेकर,
1: स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो जाए।
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की।
1: हाँ, आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा ना वा।
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर

0: सकती है। तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं भाई, चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पति के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है,
1: चाय की प्याले भी करवा लिए जाते हैं।
0: कप चाय मिल जाने पे
1: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसमें लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
0: ओहो, क्या बात है भाई,
1: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है इनका।
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है, लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है। सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
1: तो वही, चलिए गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के द्वारा।

0: पे हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को दो कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बनाती है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जुड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको। और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल, जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है। और बहुत से लोगों को लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है, वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: मैं देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया की, मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर से उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती। और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरी अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी,
2: बिल्कुल जाना है, शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है, तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर इसका हिस्सा बनेंगे।
2: बिल्कुल पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की,
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा, तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं। और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में

0: और देखो आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से इजाजत। हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओ, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओ, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुँचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। तो यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे।
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सखियों की बात होती है और सखाओ की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाटे, और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा आंटी सारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके तो कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन सा कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहेलियां जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म के नाम है फिर तेरी कहानी याद आई। काले बोलने दिल में सनम की सूरत, आंखों में आंखें दे, मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है इधर, आजकल तो पक्षे की मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने कामकाज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं कामकाज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो कामकाज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा भारतनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेके आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेके अगस्त सब अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये है कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में, हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमें बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का, इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छे हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: हाँ,
1: चलता रहते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं घनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं
1: इसके अलावा? तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, जो मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी मेहरबानी आप लोगों की,
0: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना है, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
1: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
1: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और हमको अभ्यास भी है। राजस्थान के लोग हैं हम तो, गर्मी का अभ्यास है।
0: तो नरोत्तम जी ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी दूं, अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरे रेडियो चलता ही है और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
0: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
1: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
0: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
1: अभी जो गाना

0: सुनना चाहूंगा। दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है
1: जी।
0: धर्मेंद्र हेमा मालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए। कितना

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार कच्छ, खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला, गुजरात की
1: जटिल कला है। जटिल कला है जो तो कोई नहीं कर सकता, सीखने में टाइम लग जाता है। और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुतियान है या कोई तसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है।

0: वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
1: जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि कादर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है या फिर ये सिर्फ आप करते हैं?
0: ना मैं करता हूँ, मेरा वाइफ भी करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
1: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
0: ना बिल्कुल सुनते रहते क्यों नहीं, विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहे गीत पत्रों के ऊपर आधारित।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादर जी अपनी पसंद का गीत।
0: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है खानदान, उसका है लता मंगेशकर की आवाज में है ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
1: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम भी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुरिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: तो बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग।

0: लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
1: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
0: हाँ जी अच्छी है।
1: अच्छा तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
0: खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
1: अच्छा अच्छा कमलेश जी बताइए, फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
0: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
1: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल हाँ आना चाहिए, है ना?
0: हाँ जी सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है, कहीं से भी हर जगह जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरवाइस का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
1: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
0: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरवाइस सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
1: शाम को
0: कार्यक्रम।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
0: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
1: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा।
1: जय महाराष्ट्र, आमची मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा।
1: मैं अभी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी। मेरे को हो गया 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए?
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: जी, आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी मेरा। वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर। गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग है, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी।
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है, वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है लगता है। हाँ जी
0: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी।
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ। पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है, और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार?
1: मैं अकेला ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेट भी होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम। नमस्ते।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी बताइए, क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम। जी मैम मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम, ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है?
1: जी जी मैम ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को से भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोफ्टनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोफ्टनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम यही काम है, गाँव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था SMS के बहाने BBS के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबले ग्राम सामनाकर तालुका कागल जिला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हालचाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमदे करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वैसे तीसरे साल में बंद रहता हूँ, घर में रहता हूँ, सुनता हूँ।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसे पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हूँ, रेडियो सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ, भजन गाता हूँ, भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हूँ।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा जोती बमाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा जोती बमाजा बोलूया चांगे भले, सासन काठी डुले जोतीबाची सासन काठी डुले, सासन काठी डुले जोतीबाची सासन काठी डुले, सासन काठी डुले
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने तैयार किया लता मंगेशकर SB बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

0: ये था हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG का उत्पादन हो रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे शाम 6:05 पर। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार। वापिस आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से शाम 6:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत की प्रस्तुति होगी शाम 6:40 पर।

सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम आप ये सुनेंगे शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे शाम 7:25 पर।

ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद की प्रस्तुति होगी शाम 7:50 पर। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। हम पेश करेंगे गजल का प्रोग्राम महफिल।

हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग की प्रस्तुति होगी रात्रि 10:30 पर। आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी समाचार बारी बारी से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदन यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का युवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे हिंसा समाधान नहीं, राजीव गांधी का जीवन परिचय, और इसके अलावा कुछ फिल्म संगीत भी सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हिंसा समाधान नहीं विषय पर कुछ बातें। दोस्तों, हिंसा किसी भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं हो सकता, बल्कि यह केवल नई समस्याओं और प्रतिशोध को जन्म देती है। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान विचारकों ने हमेशा यही संदेश दिया है कि शांति और संवाद से ही दुनिया के जटिल विवाद सुलझाए जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हिंसा समाधान क्यों नहीं है, इसके भी कुछ मुख्य कारण हैं। यदि आप किसी समस्या को सुलझाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं तो विरोध पक्ष भी बदले की भावना से प्रतिक्रिया देता है, जिससे विवाद का कभी अंत नहीं होता। हिंसक माहौल बच्चों और समाज के भावनात्मक विकास को नष्ट कर देता है और यह पीढ़ियों तक मानसिक आघात छोड़ देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हिंसा केवल एक लक्षण को दबा सकती है, लेकिन समस्या की जड़ असंतोष, अन्याय या गलतफहमी को मिटा नहीं सकती। तो आखिर समस्या का वास्तविक समाधान क्या है? बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे के समाधान निकाले जा सकते हैं, जहां दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, फिर दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश करना और शांतिपूर्ण तरीके से न्यायसंगत हल खोजना भी समस्या का समाधान हो सकता है। यदि आप अपने आसपास या समुदाय में किसी विवाद, घरेलू हिंसा या संघर्ष का सामना कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल बातचीत और समझदारी से ही सुलझाया जा सकता है, इस बात का गांठ बांध लीजिए। हमें और आपको सभी को ये समझना चाहिए कि हिंसा कभी समस्या का अंत नहीं, बातचीत बैठकर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो आइए अब हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, अब आइए युवाणी कार्यक्रम में चर्चा करते हैं राजीव गांधी का जीवन परिचय विषय पर। दोस्तों, राजीव गांधी भारत के सातवें प्रधानमंत्री थे, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उन्होंने 1984 से 1989 तक, यानी 1984 से 1989 तक देश का नेतृत्व किया। एक आधुनिक सोच वाले राजनेता के रूप में उन्हें भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव रखी थी।

राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में हुआ। इनके परिवार की बात करें तो वे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र थे। साथ ही वे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती भी थे। उनकी स्कूली शिक्षा देहरादून के दून स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उन्हें राजनीति से ज्यादा शौक विमान उड़ाने का था। उन्होंने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया और इंडियन एयरलाइंस में पायलट के रूप में काम किया। राजनीति की बात करें तो सन 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में असामयिक निधन के बाद वे अनिच्छा से राजनीति में कदम रखे। अपनी माता इंदिरा गांधी की दुखद देहांत के बाद सन 1984 में उन्होंने सबसे युवा 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। राजीव गांधी देश में कंप्यूटर, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक क्रांति को बढ़ावा दिया। 18 वर्ष की आयु के युवाओं को वोट देने का अधिकार यानी मताधिकार भी उन्हीं के कार्यकाल में 1989 में दिया गया। ये बहुत बड़ा फैसला था और अंत में दुखद अंत हुआ। यानी 21 मई सन 1991 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एक आत्मघाती हमले में उनका निधन हुआ। उनके बलिदान की स्मृति में प्रतिवर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस 20 अगस्त को भारत सरकार सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाती है। राजीव गांधी के जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं एक ये फिल्म संगीत।

शिद्दत फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सचेत टंडन, परंपरा टंडन और सचिन और साथियों की आवाजों में। दोस्तों आइए

0: तेरे लिए जीते हैं फिल्म का ये गीत सुनने के बाद। अब आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं आंधी फिल्म का एक गीत, लेकिन इससे पहले सुन लीजिए कुछ संदेश।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

आंधी फिल्म के इस गाने के साथ ही युवाणी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

मनोरंजन ओझा के गाए इस भोजपुरी लोकगीत के साथ ही लोक गीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुआ चाहते हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी बुलेटिन समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

प्रणाम। ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ सभी दिव्या से भोजपुरी में समाचार सुनी। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही के तुरंत प्रभाव से हटा दिहल गेल बा। लोक भवन ए संबंध में अधिसूचना जारी कैले बा। अधिसूचना के मुताबिक विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी के नया कुलपति के पक्का बहाली होके तक कुलपति के जिम्मा सौंपल गेल बा। एने लोक भवन 6 गो विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, उपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय आ जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति के बहाली खातिर 20 जून तक आवेदन मांगले बा। विधान परिषद के भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट खातिर हाल में भयल उपचुनाव में राजद के नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय आज सदन के सदस्यता ग्रहण कैले। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह उनकरा के सदस्यता ग्रहण करवैले। इस मौका पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत और कई गो गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज श्रावणी मेला आ बाढ़ से पहले के तैयारी के समीक्षा खातिर एगो उच्च स्तरीय बैठक कैले। मुख्यमंत्री सचिवालय में भयल ई बैठक में अधिकारी लोगन के बाढ़ राहत आ बचाव कार्य के तैयारी तेजी से पूरा करे के निर्देश दिहल गेल बा। मुख्यमंत्री श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालु लोगन के सुविधा आ सुरक्षा खातिर भी तगड़ा इंतजाम करे के निर्देश दिहले। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ विजय प्रसाद यादव समेत कई गो विभाग के मंत्री लोग भी मौजूद रहे। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर उनकरा श्रद्धापूर्वक याद कर रहल बा। यही दिन साल 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवादी के साजिश के शिकार भेल रहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि देले। पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में भयल श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता आ कार्यकर्ता लोग पूर्व प्रधानमंत्री के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दिहल लोग। आज के दिन के पूरा देशभर में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनावल जा रहल बा। ये दिवस के मनावे के मकसद युवा के आतंकवाद अहिंसा के संस्कृति से दूर रखे के बा। ये अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही साथ ढेर कार्यक्रम आयोजित कल गए। हमार औरंगाबाद संवाददाता बतावले कि समाहरणालय में भयल कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा के साथे साथे अन्य अधिकारी आ कर्मी लोग आतंकवाद आ हिंसा के डट कर विरोध करके शपथ लिहल लोग। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 24 मई के होखे वाला भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा खातिर 3 गो नया परीक्षा केंद्र शुरू कैले बा। आयोग के अनुसार केंद्र पर भीड़ कम करे खातिर भुवनेश्वर

0: कानपुर आ मेरठ में परीक्षा केंद्र स्थापित कल गेल बा। एकरा साथ ही अब देश भर में केंद्र के कुल संख्या 83 हो गेल बा। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार कहलन, ई सुनिश्चित कल जा रहल बा कि दिव्यांग उम्मीदवार के उनकर मनपसंद परीक्षा केंद्र आवंटित कल जाओ। ए साल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 खातिर कुल 8,19,000 से बेसी आवेदन भइल बा। काल वैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के कई को भाग में आंधी बारिश की परिस्थिति बनल बा। मौसम विभाग अगला 2 से 3 घंटा के भीतर खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, कटिहार सहित राज्य के उत्तर भाग में अधिकांश जगह पर आंधी, पानी और ठनका गिरे के अलर्ट जारी कैले बा। लोग के सलाह दिहल गई बा कि ए समय बिना कोनो काम के घर से बाहर ना निकली। उन्हें दक्षिण बिहार के ज्यादातर भाग में भीषण गर्मी के प्रकोप जारी बा। पटना, गया, नालंदा, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल सहित राज्य के दक्षिण पश्चिम आ दक्षिण मध्य भाग में अधिकतर जगह पर लू की स्थिति बनल बा। पटना आसपास के क्षेत्र में तेज गर्मी आ उमस के कारण आम लोगन के जनजीवन प्रभावित भइल बा। सुपौल जिला के बीरपुर में सालसपुर चौकी के लगे एसएसबी के जवान एगो नेपाली महिला के पास से हिरण के सिंह बरामद कैले बा। आरोपी महिला के हिरासत में लेके पूछताछ कल जा रहल बा। अररिया जिले के पलासी प्रखंड के 5 पंचायत में आज जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत शिविर लगावल गई। एक कैंप में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगन के स्वास्थ्य के जांच कल गई और विभिन्न सरकारी कार्यक्रम के जानकारी दिहल गई। नवादा जिला के गोविंदपुर में मौजूद ककलोत जलप्रपात में घूमे खातिर और गाड़ी खड़ा करे खातिर पार्किंग फीस 10 गुना तक बढ़ा दिहल गई बा। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एही जे समाप्त भइल।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार श्रोता भाई बहन, आप सुन रहल बानी हमनी के प्रिय कार्यक्रम किसानवाणी। आज हमनी के एक बहुत जरूरी विषय पर बात कइल जाए, लेकिन बात करे से पहले अपन परिचय दे दी। हम आपके साथ बानी सुगिया बहन और हमरा साथ बानी पंचू भाई। पंचू भाई, सब श्रोता भाई बहन के साथ साथ रुआ के भी नमस्कार।
1: नमस्कार सुगिया बहन और सभी किसानवाणी कार्यक्रम के श्रोता भाई बहन लोग के, पंचू भाई के दंडवत।
0: देखिए पंचू भाई, गर्मी के मौसम आते ही तापमान बढ़ जाला, तेज धूप, लू और गर्म हवा हमनी के शरीर के नुकसान पहुंचा सकता। यदि सावधानी ना बरतल जाए तो डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, थक

0: कान और हीट स्ट्रोक जैसा समस्या हो सकता, ऐसे गर्मी से बचाव बहुत जरूरी बा।
1: बहुत जरूरी बा। आ जितना गर्मी से बचाव जरूरी बा, उतने हमने के जल स्रोतन के भी बचाव जरूरी बा। कहें कि एक तरफ जहां गर्मी अपना चरम पर पहुंच रहल बा, तो वहां जहां तहां अगलगी के घटना भी बढ़ रहल बा। आ हमने के जौन पारंपरिक जल स्रोत रहे, जैसे तालाब, पोखरा या बड़ा बड़ा सरोवर, वो भी खत्म हो चलल बा। जौना चलते आग बुझावे खातिर पानी तक नहीं खे मिलत। सुगिया बहिन, स्थिति तो ही रहा कि दमकल रहते, दमकल में पानी भरे के कहीं कहीं
0: पानी
1: व्यवस्था ना भेल। तो एकरा अलावा पानी के अभाव में खाली जंगली जानवर ही ना बल्कि पालतू पशु भी परेशान बन।
0: जी देखिए, सबसे पहले तो इस बात रुआ जो कहनी है एकदम 100 में 110% सही बा। एक साथ साथ हमने के सबसे पहले पर्याप्त पानी पियल बहुत जरूरी बा अपना शरीर खातिर। गर्मी के दिन में शरीर से पसीना के रूप में पानी निकलेला, ऐसे दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी तो जरूर पिए के चाहिए। घर से बाहर निकलते समय पानी के बोतल साथ रखी, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ORS जैसा पेय पदार्थ भी लाभदायक होला। तीसरा बात, तेज धूप से बची। सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक बहुत तेज धूप होला। ये समय बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले। यदि बहुत जाना जरूरी बा तो सिर पर टोपी, गमछा या छाता लेकर ही हमनी के निकले के चाहिए। तीसरा बात बा, हल्का और सूती कपड़ा पहनी। गहरा रंग के और मोटा कपड़ा के जगह पर हल्का रंग के सूती कपड़ा से शरीर के ठंडा रखेला और पसीना जल्दी सूख जाला। एकरा बाद अगर बात कही जाओ खान पान के, तो एकर भी ध्यान रखे के चाहिए। गर्मी के मौसम में ताज़ा भोजन करे के चाहिए। अधिक पानी, अधिक तलल भुनल चीज और मसालादार चीज़ से हमने के बचे के
1: चाहिए।
0: फल में बा, जैसे मौसमी फल बा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम और संतरा में शरीर में पानी के कमी के पूरा करेला। ऐसे हमने के साथ में बच्चा के और बुजुर्ग के भी विशेष ध्यान रखे के चाहिए। कहीं इन लोग के गर्मी के चपेट में जल्दी आ जलन। देखिए बच्चा के तो स्वभाव ही बाकी खेलते रहना, तो बच्चा खेलत रहन वो से बचे खातिर हमने के बच्चा पर भी ध्यान दिया जरूरी बा। और बुजुर्ग पर ऐसे ध्यान दिया जरूरी बा कि उन लोग के शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाला।
1: तो देखिए बड़ा नीमन बात बतौनी। आ एकरा खातिर हमने के जहाँ तक जल स्रोतन के बचावे के बात भइल, तो हमने के काफ़ी हद तक खुद ही जिम्मेदार बन जा। पुरनिया लोग अक्सर कहेला कि फला गांव में एक वैसन पोखरा या तालाब रहे कि जौना के पानी गर्मी में भी ना सूखत रहे, लेकिन आज वो सरोवर, तालाब या फिर पोखर खत्म हो गई। एकरा चलते जमीन के अंदर जलस्तर हर साल नीचे चल जाता। फरवरी के बाद से ही चापाकल सूखे लगता। पहले के ताल पोखर भर के ओकरा ऊपर घर बन गई। गर्मी के खेती भी प्रभावित हो रहा बा। ऐसे एकर व्यापक प्रभाव हमने के अस्तित्व के बर्बाद कर देवे, ओ से पहले चेत लेवे के चाहिए।
0: जी अंत में हमने के ये कहल चाहब जा कि गर्मी से बचाव खातिर छोटा छोटा सावधानी अपना के हमने के खुद के और अपना परिवार के सुरक्षित रख सकत नहीं जा। तो आई यह गर्मी में पानी पीही, धूप से बची और स्वस्थ रही, ये हमने के संकल्प लेवे के। और अब हमने के कुछ अपना कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी ले लिहल जाओ। देखिए आज हमने के तुरंत जानकारी लिहल जी आज के कार्यक्रम के तहत देश विदेश संबंधित कृषि समाचार। और आज की बातें में वार्ता की विषय हुई खरीफ फसलों में ध्यान देने योग्य बातें। वार्ताकार होकर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह और विषय हुई खरीफ फसलों में ध्यान देने योग्य बातें। एकरा बाद फिर हमने के अपना चर्चा पर वापस आवल जी, नया दौर नई बातें के अंतर्गत चर्चा के विषय हुई वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं। और आज की नसीहत में एक बार फिर से चर्चा के विषय हुई समरसीबुल का अनुचित प्रयोग ना करें। और फिर मौसम के जानकारी लिहल जाए, तब अभी कुछ देखा तो नहीं कि वह खबर खबरात ले के बैठल बानी।
1: बिल्कुल,
0: तो बताई का का खबर ले ले बानी।
1: देखिए सुगिया बहन, भारत मौसम विज्ञान विभाग कहले बा
0: जी
1: कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 के 26 मई के केरल तट पर पहुँचे के संभावना बा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगमन में लगभग 4 दिन आगे या पीछे होके के संभावना भी बनल बा। फिलहाल मानसून दक्षिण पूर्व अरब सागर, अंडमान सागर, बंगाल के खाड़ी,

0: कोमोरिन क्षेत्र के कई हिस्सा में आगे बढ़ चुकल बा। आईएमडी के 18 मई के जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार अगला 3 से 4 दिन में मानसून के और आगे बढ़े के परिस्थिति अनुकूल बनल बा। विभाग बतौले बा कि मानसून के उत्तरी सीमा अब बहुत काफ़ी आगे बढ़ गई बा। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगला 6-7 दिन के दौरान बहुत बारिश होके के चेतावनी जारी कर गई बा। एगो और खबर ई बा कि इस साल देश में जायद फसल के बम्पर बुआई भइल बा। लगभग 83 लाख हेक्टेयर पहुँच गई बा। दलहन, तिलहन आ मक्का के खेती में बड़ा उछाल भइल बा। देश में कृषि मंत्रालय द्वारा जौन आंकड़ा जारी कैल गेल बा ओकरा अनुसार 15 मई तक ग्रीष्मकालीन फसल के अंतर्गत 83.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई कैल जा चुकल बा, जबकि पिछला वर्ष यही अवधि में ई आंकड़ा 80 हेक्टेयर रहे। 80 लाख हेक्टेयर
1: जी, बहुत अच्छा खबर बतैनी। दूगो खबर हमरो पास बा जौन कि एक देश के खबर बा और एक विदेश के खबर
0: बा। बताई बताई।
1: देखिए, देश के जौन खबर बा उ ई बा कि खरीफ फसल के तैयारी और मौसम पर जोर। भारत में खरीफ सीजन के देखते हुए किसान के धान, मक्का और दाल के बुआई के तैयारी करे के सलाह दिहल जा रहल बा। कृषि विभाग किसान के बीज चयन, सिंचाई और मौसम के अनुसार खेती करे के जागरूक कर रहल बा ताकि उत्पादन बेहतर हो सके। और अब विदेश के खबर बा कि नया खेती तकनीक पर जोर। कई देश में किसान खातिर आधुनिक खेती तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई, स्मार्ट सेंसर और कम पानी के खेती में तकनीक के बढ़ावा दिहल जा रहल बा। एकरा से पानी के बचत और फसल उत्पादन दोनों में सुधार हो रहल बा। और देखी, अब हमनी के कुछ अपना वार्ता के तरफ चलल जाओ। देखी पंचू भाई, हमनी के कार्यक्रम जो बा वो आज हमनी के बात कल जाइए, मतलब हमनी के जानकारी लिहल जाए कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में। कंपोस्ट यानी केचुआ खाद, खाद बनावे के जोन खेती और बागवानी खातिर बहुत उपयोगी बा और प्राकृतिक खाद बा। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसन जैविक खाद है जौना के केचुआ के मदद से बनावल जाला और ई माटी के उर्वरता भी बढ़ावेला और पौधा के अच्छा वृद्धि में भी मदद करेला। अब जानल जाओ कि एकरा के बनावे के विधि का बा।
0: देखिए,
1: सबसे पहले एक छायादार और ठंडा जगह चुनी। आप जमीन पर गड्ढा या प्लास्टिक टब, सीमेंट के टंकी या लकड़ी के बॉक्स इस्तेमाल भी कर सकत नहीं। अब नीचे सूखा पत्ता, भूसा या कागज के परत बिछाई। एकरा ऊपर गोबर और रसोई के जैविक खाद के छिलका, सूखा पत्ता और घास डाली। ध्यान रखें कि प्लास्टिक, कांच या रासायनिक पदार्थ ना डाली। एकरा बाद एहमे केचुआ के खाद डाली। आमतौर पर लाल केचुआ वर्मी कंपोस्ट खातिर अच्छा मानल जाला। और एह मिश्रण के हल्का नम रखी, समय समय पर पानी के छिड़काव करत रही।
0: केचुआ में एक बात तो और बाकी, अच्छा प्रजाति के जरूर चयन करे के चाहिए। जैसे आइसेनिया फेटिडा प्रजाति के जो केचुआ होलन वो खेती बाड़ी खातिर बहुत उपयोगी होलन। एकरा अलावा देखी, जैसे स्थान के चुनाव, बेड तैयार करे के बतौली हाँ, तापमान कम करे खातिर गोबर से गैस निकाले के चाही, ना तो उतना ही सही तरीका से लाभ ना हमने के मिल पावे। तो खाद तैयार जो होला ओकरा के अलग करे खातिर भी प्रशिक्षण होला
1: जी।
0: तो कुल मिला के प्रशिक्षित लोग ये काम के करे तो ज़्यादा अच्छा बा।
1: देखिए, 45 से 60 दिन में केचुआ के यह कचरा से सड़ल काली और भूरभूरा खाद में बदल दी। यह वर्मी कंपोस्ट है। अब खाद के छान के अलग कर ली और खेत के गमला या बगीचा में उपयोग करी। देखी बंजू भाई और सब श्रोता भाई बहन, वर्मी कंपोस्ट सस्ता, प्राकृतिक और पर्यावरण खातिर लाभदायक खाद बा। एकरा से माटी स्वस्थ रहला और रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम हो जाला। तो आई जैविक खेती अपनाई और वर्मी कंपोस्ट अपना के अपना फसल के मजबूत बनाई और एकरा साथ हमनी के

0: जानकारी भी लिहल जाओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह से, विषय बा खरीफ फसलों में ध्यान देने योग्य बातें,
1: तो आही सुनल जाओ।
2: अंतर्गत धान्य फसलों, धान, मक्का, तिलहनी फसलों, तिल, सूरजमुखी एवं दलहनी फसलों, अरहर, उड़द एवं मूंग की खेती हेतु ध्यान देने के साथ साथ सब्जियों, लतरदार जैसे लौकी, नेनुआ, करेला, तिरोही, खीरा और एवं कंदवर्गीय फसलों, हल्दी, अदरक, सूरन की खेती पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। सर्वप्रथम खरीफ फसलों की खेती करने के लिए खेत की तैयारी के अंतर्गत गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे मृदा में ताप एवं वायु के संचार के साथ साथ हानिकारक सूक्ष्म जीव, कीट एवं उनके अंडे समाप्त या नियंत्रित हो जाए। इस जुताई के लिए वर्षा या सिंचाई की जरूरत है। जुताई पश्चात उसमें ढैंचा का बीज 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छींट देते हैं और 40-45 दिन बाद जुताई कर मिट्टी में दबा देने से हरी खाद के रूप में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मृदा में संचय के साथ साथ खेती की लागत में भी लगभग 1400 से 1500 की कमी आती है। क्षेत्र के आधार पर खरीफ में सबसे ज़्यादा आच्छादित होने वाला फसल धान है। ऊंची जमीन, मध्यम जमीन और नीची जमीन के अनुसार उन्नत एवं अधिक उपजशील तथा संकर किस्मों को चयन कर बीज उपचारित करके ही मुख्य खेत में रोपनी के 40वें हिस्से में बिचड़ा उगाना चाहिए। ऊंची जमीन के लिए शीघ्र पकने वाली कम दिन की अवधि वाली किस्मों जैसे तुरंता, प्रभात, शिवम, हजारी धान 1, साकेत 4, IR 36, IR 64 एवं MTO 1010 इत्यादि को लगाना चाहिए, जबकि मध्यम जमीन में मध्यम अवधि 125 से 140 दिनों में पकने वाली किस्मों जैसे सीता, राजेंद्र, श्वेता, कनक, संतोष किस्मों को लगाना चाहिए। मध्यम अवधि में सुगंधित किस्मों में पूसा सुगंधा 2, पूसा सुगंधा 3, पूसा सुगंधा 4 एवं 5, राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र भगवती प्रजातियों का चयन करना चाहिए। नीची जमीन 140 से 160 दिन अधिक समय में पकने वाली किस्मों को देर से पकने वाली प्रजातियों जथा राजेंद्र महासूरी 1, नाटी मंसूरी, सुगंधा, सत्यम, राजश्री, शकुंतला को लगाना चाहिए। यदि शंकर धान की खेती करनी हो तो PHB 71, PA 64-44, PA 62-01, पूसा RS 10, पंत शंकर धान 1, शंकर धान से 20-25% उपज बढ़ाई जा सकती है। यह प्रयास होना चाहिए कि श्री विधि के अनुकूल प्रक्षेत्रों पर श्री विधि से ही धान की खेती कर परंपरागत विधि की तुलना में 25-30% उपज ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। लंबी अवधि वाले नीची जमीन धान के बीज को बिछड़े हेतु रोहिणी नक्षत्र से बीज स्थली तैयार कर बीजोपचार कर नर्सरी में बीज को गिराना चाहिए। मध्यम अवधि के प्रभेदों की रोपनी करने हेतु 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए एवं देर से पकने वाली किस्मों हेतु 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। धान रोपनी के उपरांत 4-5 दिनों के अंदर 10 किलोग्राम जैव उर्वरक नील हरी सहीवाल का प्रयोग कर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की किया जा सकता है। खरीफ धान एवं मक्का के खेतों में जैविक खाद, कंपोस्ट, केचुआ खाद देकर जुताई कर खेत की तैयारी करनी चाहिए। खरीफ में उगाए जाने वाले तिलहन जैसे तिल, राम तिल, सूरजमुखी एवं दलहन, इसके अंतर्गत अरहर, उड़द, मूंग की खेती हेतु उन्नत एवं उपयुक्त प्रभेदों की व्यवस्था सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, जिससे उपज में वृद्धि

0: हो सके। तेलहन फसलों को एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक से तथा दलहन फसलों को जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करने से निश्चित ही 10-15% उपज में वृद्धि होती है। गर्मा उड़द मूंग में निकाई गुड़ाई के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है एवं कीट रोग के प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि 2 तुड़ाई हो चुकी है तो फसल की जुताई कर खेत में दबा देने से हरी खाद बन जाता है अथवा ऊपरी भाग वनस्पति भाग को हरा चारा के रूप में पशुओं को खिलाकर उन्हें प्रोटीन की प्राप्ति कराई जा सकती है। ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे लौका नेनुआ करेला भिंडी में प्रति सप्ताह सिंचाई करें एवं निकाई गुड़ाई कर खरपतवार प्रबंधन एवं कीट व्याधि के नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। फुहारा सिंचाई विधि स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करने पर सब्जियों की उपज एवं गुणवत्ता में वृद्धि निश्चित वृद्धि होती है। बरसाती सब्जियों जैसे लतरदार में लौकी नेनुआ करेला खीरा इत्यादि को मई के अंत में पॉलीथीन ट्यूब में लगाकर बिचड़ा तैयार कर वर्षा होने पर खेतों में रोपण करें जिससे अगात उत्पादन बिक्री से अधिकतम शुद्ध लाभ कमाया जा सके। भिंडी बोदी के उन्नत प्रभेदों को सीधे खेत में बुआई करनी चाहिए। हल्दी अदरक एवं ओल की जिन्हें सुरन भी कहा जाता है बुआई प्रथम बारिश के साथ ही प्रारंभ कर दें। खेत से मिट्टी जांच हेतु नमूने लेकर जांच करवाने हेतु प्रयोगशाला में भेज दें क्योंकि खेत में खाद एवं उर्वरक डालने के बाद नमूना हेतु मृदा नहीं लेना चाहिए। कृषक बंधुओं को अपने बीजों को की अंकुरण प्रतिशत को जानने के लिए प्रयोगशाला में भेज करके और अंकुरण प्रतिशत को जानने के बाद ही बीज की बुआई करनी चाहिए या नर्सरी में बीज को डालना चाहिए। इस प्रकार से अगर इन बातों पर ध्यान रखा जाए और ध्यान रखकर ही खेती किया जाए तो निश्चित रूप से हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं।
1: देखिए सुगिया बहन
2: जी,
1: खरीफ फसल में ध्यान देवे योग्य बात के बारे में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह कितना बढ़िया से फरिया फरिया के बतौलन,
2: हमने के फरिया फरिया के सुननी जा, जानकारी लेनी जा,
1: जानकारी
2: पर अमल भी करब
1: जा। के बहुत बहुत धन्यवाद बा। अब कार्यक्रम शुरू कर जाओ आगे खातिर, ओ से पहले सुन लिया जाओ कुछ संदेश
2: जी,
1: सुना जाओ।

ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट,

0: बोरवेल हल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: देखी श्रोता सभे, हमने के आज के चर्चा शुरू कर ली है जा सुगिया बहन
1: जी
0: जल से। आ जल में एगो और चीज बा कि एकर हमने के अनुचित उपयोग ना करे के चाहिए।
1: देखी समरसेबल पानी के स्तर जो इतना आज पंचू भाई गिर गए वजह बा समरसेबल पंप के अनुचित प्रयोग। आजकल खेती घर और उद्योग में पानी निकाले खातिर समरसेबल पंप के खूब उपयोग होता है। इस सुविधा तो देला लेकिन एकर गलत और अत्यधिक उपयोग के कारण जल संकट संसाधन जोन बा बहुत खतरनाक हो जा रहा है,
0: परेशानी बढ़ जाए ना बाद में
1: जी। समरसेबल पंप के जमीन के नीचे से भूजल निकलेला, यदि एकर जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कइल जाए तो भूजल के स्तर तेजी से नीचे चलत जाला और चलत जा रहल बा। कई गांव और शहर में कुआं चापाकल और हैंडपम्प तो सूखिए गइल बा। एकर कारण बहुत बड़ा बा पानी के अनियंत्रित दोहन। अब सवाल बा कि अनुचित प्रयोग का है, जब हमनी के बिना जरूरत के घंटों तक पाइप चलावत रही ले जा, खेत में जरूरत से ज़्यादा सिंचाई करी न जा, पाइप से पानी के बहता छोड़ दी जा या पानी के बर्बादी करी न जा, यह सब है अनुचित प्रयोग। एकरा से नुकसान बा, सबसे पहला बड़ नुकसान बा कि भूजल स्तर गिरेला, दूसरा नुकसान बा बिजली के बर्बादी होला, तीसरा नुकसान बा पंप जल्दी खराब हो जाला, चौथा नुकसान बा आवे वाला पीढ़ी के पानी भी कम के कमी झेले के पड़ी। किसान खातिर ये बात बहुत जरूरी बा, खेती में उतना ही पानी दी जितना फसल के जरूरत बा। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसन तकनीक के उपयोग करी जौना से पानी के बचत हो। घर में भी सावधानी रखी, पानी भरे के बाद मोटर बंद करी, पाइप खुला ना छोड़ी, पाइप के हर बूंद कीमती बा पानी के। साथ ही भाई बहन वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी
0: जल बारिश होला
1: हाँ एकरा के भी उपयोग मतलब जरूरी बा और भू जल स्तर एकरा से बेहतर रही। हमनी के याद रखे के चाहिए पानी बा त जीवन बा। यदि आज हमनी के पानी के

0: बचत के आदत ना अपनैनी जा तो कल कठिनाई बढ़ सकता। तो आई संकल्प ली कि समरसेबल पंप के सही और जरूरत भर उपयोग करब, पानी के बर्बादी ना करब और जल संचयन के बढ़ावा दिहल जाए।
1: आप कुछ हमने के जान दिहल जाओ कृषि सुझाव के बारे में?
0: जी जरूर बताई।
1: तो लू के स्थिति में फसल में नमी के कमी, पत्ती के झुलसना, फूल फल गिरना और पशुअन में दुग्ध उत्पादन कम हो सकेला। सुबह शाम हल्की सिंचाई करी, मल्चिंग अपनाई, दिन में उर्वरक कीटनाशी के छिड़काव मत करी और पशुअन के छायादार स्थान में पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध कराई। एकरा अलावा सुबह शाम पौधन के हल्का सिंचाई करी, मूंग आ उड़द के फसल में रस चूसक कीट, माहू, हरा फुदका, सफ़ेद मक्खी आ थ्रिप्स कीट के निगरानी करी। बचाव खातिर मैलाथियान 50 EC या डर्मेथोएट 30 EC के 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से फसल में छिड़काव करी। आ भारत मौसम विभाग विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान के अवधि में 24 मई तक जिला आसमान साफ रही, मौसम शुष्क रहे के अनुमान बा। जिला में कल हीट वेव के संभावना बा। अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 50 से 60% और दोपहर में 15 से 20% रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान के अवधि में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के संभावना बा।
0: जी अब यही के साथ देखी घड़ी के इशारा बा आप सबसे विदा लेबे के। चलत चलत के समय सुगिया बहन के तरफ से सब श्रोता भाई बहन के नमस्कार और पंचू भाई रवा के भी नमस्कार।
1: नमस्कार सुगिया बहन और सभी श्रोता भाई बहन लोग के, पंचू भाई के राम राम।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

दामाद जी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मनोज तिवारी और श्रेया घोषाल की आवाज़ें थीं। विनय बिहारी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी लाल सिन्हा ने। और अब आइए सांझ गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं निरहुआ मेल फिल्म का एक गीत। मोहन राठौर की आवाज़ है, प्यारे लाल यादव हैं गीतकार और संगीतकार हैं राजेश रजनीश।

निरहुआ मेल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहन राठौर की आवाज़ में प्यारे लाल यादव के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राजेश रजनीश ने।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: हलवा।
1: श्रोता दोस्तों, इस वक्त आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। इस कार्यक्रम में हम अगला गीत हम आप तक पहुंचाएं, इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

मोहब्बत के मौसम फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे मोहन राठौर और अनुजा सिन्हा की आवाज़ों में। विनय बिहारी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी अन्नू मलिक ने।

संगीत कार्यक्रम में जिन फिल्मों के आप गाने सुने वो फिल्में थीं दामाद जी, निरहुआ मेल, जाने मन, निरहुआ रिक्शा वाला और मोहब्बत के मौसम। गायक कलाकार थे मनोज तिवारी, श्रेया घोषाल, मोहन राठौर, आलोक कुमार, उदित नारायण और अनुजा सिन्हा।

और अब इसी के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

बात सबसे पहले जिला कैमूर की करते हैं। कैमूर के जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पूर्व सैनिकों को अब सासाराम जाने से मिली है राहत। कैमूर जिले के पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण रहा। जिला मुख्यालय भभुआंक में चकबंदी सड़क स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का विधिवत उद्घाटन आदरणीय जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार सिंह द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व सैनिकों ने लंबे समय से चली आ रही अपनी महत्वपूर्ण मांग पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। अब जिले के हजारों पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों को सैनिक कल्याण एवं सैनिक कल्याण से संबंधित कार्यों के लिए सासाराम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि जिला प्रशासन पूर्व सैनिकों के सम्मान एवं कल्याण के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सैनिक कल्याण कार्यालय के अस्थायी भवन हेतु शीघ्र उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने

की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ताकि पूर्व सैनिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने वाले वीर जवानों एवं उनके परिवारों का सम्मान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी कर्नल अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह कार्यालय जिले के पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए समर्पित सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने दूर दराज क्षेत्रों से आए पूर्व सैनिकों से अपील करते हुए कहा कि वे कार्यालय में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं ताकि उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। सासाराम में शेर शाह सूरी महोत्सव के अवसर पर आज 21 एवं कल 22 मई 2026 को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में युवाओं एवं आम जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा शेर शाह सूरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर रील प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में कुल 54 रील प्राप्त हुए। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि प्राप्त रीलों का मूल्यांकन के आधार पर 3 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। प्रतिभागी प्रतियोगिता में आकांक्षा सिंह ने प्रथम स्थान, आशीष रंजन ने द्वितीय स्थान तथा प्रियतमा कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। चयनित प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3,000 तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 2,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत जनजातीय बहुल गांवों में इंटाइटलमेंट वितरण एवं जन सुनवाई आयोजित की गई। सभी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु वंचित परिवार से आवेदन किया गया। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में संचालित जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के अंतर्गत रोहतास जिला के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में चेनारी, नौहट्टा, सासाराम, रोहतास एवं तिलोथू प्रखंड अंतर्गत आज दिनांक 21/5/2026 को 19 गाँवों में कुल 97 आवेदन प्राप्त किया गया और 27 को इंटाइटलमेंट वितरण किया गया। और दोस्तों, अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं दिल फिल्म का एक बेहद खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, हमें खेद है समय अभाव के चलते इस गीत को आप तक पूरा पूरा नहीं हम पहुंचा पाए। वक्त मिलने पर इस गाने को हम आप तक पूरा पूरा अवश्य पहुंचाएंगे। कृपया हमारे प्रसारण को निरंतर सुनते रहिए। और अब इसी के साथ सांझ गीत, माफ कीजिएगा, गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: AIR at 90.
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में हर हाल में सुशासन कायम रहेगा। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी बने प्रभारी कुलपति। भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट से नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय ने विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली। और काल बैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश और वज्रपात से 3 लोगों की मौत। दक्षिणी भागों में जारी है भीषण गर्मी का प्रकोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में हर हाल में सुशासन कायम रहेगा। श्री चौधरी ने पटना में पुलिसकर्मियों के परिवारों को बीमा राशि का चेक सौंपने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों से कहा कि आप ड्यूटी कीजिए, आपके परिवार की चिंता सरकार करेगी।
1: बिहार में सुशासन और आपके बल पर सुशासन, बिहार की समृद्धि का भी रास्ता आप ही है, क्योंकि आप सुशासन देंगे तो हमारी व्यवस्था खड़ी हो जाए, और जब व्यवस्था खड़ी होगी तो उद्योग धंधे लगने लगे। सभी पुलिस वाले को कहा है कि आंख मूंद कर सुशासन स्थापित करने में सहयोग, और आपके परिवार आपके लोगों की चिंता सरकार करे।
0: श्री चौधरी ने कहा कि राज्य

0: समृद्धि के लिए उद्योगों का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश हो, इसके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज श्रावणी मेला और बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को बाढ़ राहत और बचाव कार्य की तैयारियों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी व्यापक प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई विभागों के मंत्री मौजूद थे। जदयू के वरिष्ठ नेता और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। श्री चौधरी ने पटना स्थित जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विपक्ष के एक खास जाति को टारगेट बनाने के बयान को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की जाति नहीं देखी जाती है।
1: प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। जिसका भी पुलिस से मुठभेड़ हुआ वो आदमी, वो व्यक्ति क्रिमिनल हिस्ट्री का था कि नहीं था। अब क्रिमिनल को भी अगर कोई मारा जा रहा है इनकाउंटर में या पुलिस मुठभेड़ में करिए तो उसको कह रहे हैं जाति मार रहा है। क्रिमिनल का कोई जाति होता है? क्रिमिनल का तो सबसे बड़ा जाति क्रिमिनल होता है।
0: मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोक भवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी को नए कुलपति के स्थायी नियुक्ति होने तक कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। हमारे गया संवाददाता ने बताया है कि प्रोफेसर दिलीप कुमार केसरी ने आज कार्यवाहक कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर मगध विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मंगलम सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। लोक भवन ने राज्य के 6 विश्वविद्यालयों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बी आर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में कुलपति की नियुक्ति के लिए 20 जून तक आवेदन मांगे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने TRE4 शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं लेकिन परीक्षा नहीं ली जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है।
2: TRE4 के मामले में हम लगातार इस बात को रखते हैं। अब बिहार की जनता तरस रही, उम्र निकला जा रहा है, तैयारियों में इतना पैसा खर्च हुआ, लोग इतने मेहनत किए और परीक्षा नहीं होता, ये इससे बड़ा दुख की क्या बात हो सकती। इतने लोग पीड़ित हैं, सरकार वादा करके अगर मुखर जाती है, नहीं कर पाती, तो ये सरकार की फेलियर। परीक्षा
0: विधान परिषद की भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट के लिए हाल ही में संपन्न उपचुनाव में राजद के नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय ने आज सदन की सदस्यता की शपथ ली। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आर्थिक अपराध इकाई EOU का विशेष सेल गठित किया गया है। विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि यह सेल विभाग में व्यवस्था सुधार और भ्रष्टाचार पर निगरानी रखेगा। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही अवैध वसूली की शिकायत, राजस्व कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों को देखते हुए सेल के गठन का निर्णय लिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष टीम की प्रतिनियुक्ति कर दी है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। विभाग की ओर से बताया गया है कि सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञापन प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। शेष समाचार।

0: एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार मठ मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराएगी। श्री जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसकी रूपरेखा तय करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी।
1: देखिए, राजस्व विभाग ने धार्मिक न्यास परिषद के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध किया है कि हम लोग राजस्व विभाग एक बैठक बुला रहे हैं जिसमें धार्मिक न्यास परिषद के सभी सदस्य और उनके सचिव रहेंगे, लॉ सेक्रेटरी रहेंगे और राजस्व विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे। धार्मिक न्यास परिषद का लाखों एकड़ जमीन या तो मठ मंदिर का हो चाहे धार्मिक न्यास परिषद का हो, वो या तो अतिक्रमण के है या फिर आपसी विवाद में फंसा हुआ है। इसी के लिए राजस्व विभाग ये पहल करने जा रही है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के सभी जमीन सुरक्षित रहें।
0: काल बैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, कटिहार समेत राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 22 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: आंधी बारिश और वज्रपात की घटना में राज्य के अलग अलग भागों में 3 लोगों की मौत की खबर है। मधेपुरा के बिहारीगंज में वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान गया और नवादा जिले में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इधर दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अरवल, भोजपुर और रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई है।
2: राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों अरवल, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: बेगूसराय जिला प्रशासन ने अत्यधिक गर्मी के मद्देनजर 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 11 बजे के बाद पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने इस संबंध में आदेश जारी किया। यह आदेश 25 मई तक लागू रहेगा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज का दिन देशभर में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
4: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टप

0: अपनी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: शेखपुरा की स्थानीय अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी छह भाइयों को शस्त्र अधिनियम के तहत 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ के चकबंदी रोड में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय शुरू हो गया है। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत गंगटा पंचायत के सोनरवा गांव में ग्रामीणों ने नल जल योजना बंद होने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी ने बताया कि सोलर पैनल में गड़बड़ी के कारण समस्या हुई है, इसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरवाल के नेतृत्व में आयोजित अभियान के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया गया। नवादा जिले के गोविंदपुर स्थित ककोलत जलप्रपात में प्रवेश और पार्किंग शुल्क को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने, उनकी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए यह बढ़ोतरी की गई है। सुपौल जिले के बीरपुर में शैलेशपुर चौकी के पास एसएसबी जवानों ने एक नेपाली महिला के पास से हिरण का सिंग बरामद किया है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अररिया जिले के प्लासी प्रखंड के 5 पंचायतों में आज जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में हर हाल में सुशासन कायम रहेगा। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी बने प्रभारी कुलपति। भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट से नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय ने विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली। और काल बैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश और वज्रपात से 3 लोगों की मौत। दक्षिणी भागों में जारी है भीषण गर्मी का प्रकोप। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
3: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
2: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन।
1: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूर्णिया जिले के सभी 14 प्रखंडों की पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। डगरवा प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री रत्नेश

0: यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने आमजनों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, शिकायतों और आवश्यकताओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता देखने को मिली। लोगों ने भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य जनहित से जुड़े मामलों को मंत्री के समक्ष रखा। इस अवसर पर प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा कि पहले शिविर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है।
1: सहयोग शिविर में स्पष्ट रूप से राज्य सरकार का निर्देश है कि जनता का जो आवेदन आ रहा है उसको 30 दिनों के अंदर डिस्पोजल करना है। तो पहले सहयोग शिविर में जो आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग डिस्पोजल की दिशा में अग्रसर हैं।
0: इधर सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, प्रखंडों एवं पंचायतों में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जहां नियमित रूप से अधिकारी भाग लेकर आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच पूर्णिया जिले में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति स्थिति सामान्य बनी हुई है। गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं

0: 30 दिनों के अंदर डिस्पोजल करना है। तो पहले सहयोग शिविर में जो आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग डिस्पोजल की दिशा में अग्रसर हैं।
1: इधर सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, प्रखंडों एवं पंचायतों में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जहां नियमित रूप से अधिकारी भाग लेकर आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच पूर्णिया जिले में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति स्थिति सामान्य बनी हुई है। गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से होम डिलीवरी सेवा प्रदान की जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि जिले में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराहट या पैनिक में आकर घरेलू गैस सिलेंडर की अनावश्यक बुकिंग न करें। जिला प्रशासन द्वारा जिले के वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों से मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की अपील की गई है। कला और संस्कृति विभाग द्वारा संचालित इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य राज्य की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना तथा वर्षों से कला साधना में समर्पित कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले पारंपरिक शास्त्रीय चाक्षुष और प्रदर्शन कलाओं से जुड़े 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र कलाकारों को ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग बिहार के माध्यम से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 18 से 25 मई तक जनजातीय बाहुल गांव में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में प्रभारी जिला पदाधिकारी अंजनी कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत विभिन्न सेवाओं जैसे आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान, पीएम उज्ज्वला, पीएम जनधन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड आदि योजनाओं से संबंधित शिविर लगाकर निष्पादन किया जाएगा। रुपोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक लाधर प्रसाद मंडल ने भवानीपुर अंचल कार्यालय परिसर में 29 अग्निकांड पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता राशि के चेक वितरित किए। ये चेक भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र के जाबे पंचायत, शहीदगंज पंचायत, गोदावार, पतकेली पंचायत और बसंतपुर चिंतामणि उसकावरी पंचायत के विभिन्न गाँव के कुल 29 पीड़ित परिवारों को प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक कलाधर प्रसाद मंडल ने कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। गौरतलब हो कि भवानीपुर प्रखंड के बसंतपुर चिंतामणि उसकावरी पंचायत स्थित बलिया आश्रम टोला में बीते दिनों आधी रात भीषण आग लग गई थी। इस अग्निकांड में कई परिवारों की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई, जिससे उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। पूर्णिया जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नप्राशन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चों का विधिवत अन्नप्राशन कराया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के माता पिता और अभिभावकों को संतुलित तथा पोषण युक्त आहार की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि बच्चों को समय पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन।
3: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं।

प्रस्तुत है ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ई मन पसंद। तो आइए दोस्तों, इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने वाले हैं कुदरत का कानून फिल्म का एक गीत, जिसे पसंद आप सबों ने किया है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया और अपार ढेंगिया।

नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। मलकापुर से आप हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेरकर। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से आप हैं हुसैन प्रिंस डाक बाबू, अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कुवात बिहार से आप हैं जफर शेख, जफर हसन, नरगिस जफर। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत प्रवीण। दतरंगी से आप हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। और इसी गाने को सुनना चाहते हैं नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारे। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और पायल जोशी।

तेरी आँखों की चमक में खो जाने दो, इस दिल को तेरा दीवाना हो जाने दो। हमें नहीं पता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, बस अब तो हर लम्हा तेरे नाम हो जाने दो। मतलब साफ है दोस्तों, ये माजरा दिल की है, मोहब्बत की है, प्यार की है, और ये मोहब्बत ज़िंदगी में कभी कभी ही मिलती है।

आंखें फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चिनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं साकिबा, आलिया इब्राहिम, कमाल, मेराज, निसार, पंकज कुमार,

और अब आइए हम आपको सुनवाएं नमक हराम फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

हर खुशी में साथ निभाते हैं दोस्त, गम में भी मुस्कुराना सिखाते हैं दोस्त। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हर राह आसान बनाते हैं दोस्त।

दोस्ताना फिल्म के इस गाने को सुनना चाहते हैं ग्राम पोस्ट मुंगीसपुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया और वेद बाबू कठेरिया। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू जूही, इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, अशु अहमद फूलवाले, लखमिनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद राहीन, अखलाक अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार के सदस्य।

अब बारी है हमारे इन श्रोता दोस्तों की। वार्ड नंबर 26 मऊनाथ भंजन से उस्मान अली अंसारी, आसिफ अली अंसारी, आमना खातून अंसारी, सनूबर परवीन अंसारी, सुमैला परवीन अंसारी और गुड़िया अंसारी, रियाज सऊदी अरब से अशरफ अली अंसारी, सारिक अली अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य, आप सबों की फरमाइश पर हम तमाम श्रोता दोस्तों को सुनवा रहे हैं अप्रैल फुल फिल्म का ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी प्रमोद कुमार डुड्डी पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी आप सबों की फरमाइश पर अपने तमाम श्रोता दोस्तों को सुनवा रहे हैं जूली फिल्म का ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।

20 साल बाद इस फिल्म का एक गीत सुनिए, पसंद आप सबों की है। गांव टोरोवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से गगनदीप थांती, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी और बेबी वामिका और वाणी थांदी।

इस गीत को सुनना चाहते हैं ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, गौतम नगर नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले।

और पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर कांति निकेतन कुशेश्वर प्रसाद कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी और रुद्र गुप्ता।

और अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं आर पार फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी।

भगत, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके परिवार के सभी सदस्य।

और अगला मेल हम पढ़ते हैं। इस मेल में लिखा हुआ है, ई मन पसंद कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जी नमस्कार, साथ ही विश्व चाय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी दिल से शुभकामनाएं। आज के मनमोहक मनभावन कार्यक्रम में हमारी फरमाइश भी शामिल करें तो धन्यवाद। जी आपका आपको भी मेल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया भी। आप सबों ने सुनना चाहा है हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का एक गीत, और कहाँ से? जी हाँ, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मोंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर, मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीम, पलक, लुबना और यश मंसूरी और कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश ऋषिता। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

ये रात फिर ना आएगी। फिल्म का एक गाना सुनिए, पसंद आप सबों की है। नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीता मुनि देवी, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे।

इसी गाने को सुनना चाहते हैं वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। हिंदुस्तान रेडियो मित्र से आप हैं विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से।

0: गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। नया नगर सुपौल बिहार से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिलना झा।
1: मेरा प्यार वो है के मर कर भी तुमको जुदा अपनी
0: मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई।

0: इसी के साथ ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: अर्थात 819 किलोहर्ट्ज टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और लीजिए आप सुनिए समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस

0: गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन

0: सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
1: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
2: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।

0: पर्यटन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज

0: शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन हुजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। सबसे पहले आइए सुनते हैं वंदना कुमारी की आवाज में ये भोजपुरी लोकगीत।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र प्रसाद की आवाज़ में ये भजन, और अब आइए सुनते हैं ये भोजपुरी लोकगीत।

ललन सिंह के गाए इस भोजपुरी गीत के साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। पेशे खिदमत है गजल का प्रोग्राम महफिल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

अनूप जलोटा की गई इसी गज़ल के साथ महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जाले

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है।

0: और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
1: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है, प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats, yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test.
0: ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: शादी।
1: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित एक था।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है।

0: बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।
1: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। समय मिलाइए रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रस रंग। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज़ में ऐरा गैरा नथु खैरा एल्बम का ये गीत।

ऐरा गैरा नथु खैरा एल्बम का एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

और प्यार करना है एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए कुछ संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

रसरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नुसरत फ़तेह अली खां को। और अब इसी के साथ हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का ये कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। तो आइए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं दिल फिल्म के इस गाने से।

दिल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। और अब आइए सुना जाए ये रात फिर ना आएगी फिल्म का एक गीत। महेंद्र कपूर की आवाज़ है, SH बिहारी हैं गीतकार और OP नैयर हैं संगीतकार।

0: महबूब की मेहदी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुँचाएं, इससे पहले सुनिए कुछ संदेश।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अर्पण फिल्म का एक गीत, अनवर की आवाज़ है, आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार, एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अनवर के गाए इस अर्पण फिल्म के साथ ही हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट तराने यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। रोज की तरह कल भी प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। नमस्ते रोहतास कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 7:30 पर। देशभक्ति संगीत आप सुन सकते हैं 8:15 पर। पसंद आपकी हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आपके पत्रों पर आधारित होता है, इसे प्रस्तुत किया जाएगा कल 8:20 पर। प्रादेशिक समाचार 8:45 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका की प्रस्तुति होगी 9:10 पर। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। हिंदी समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 10:00। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से 10:05 पर हम प्रस्तुत करेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमाधुरी का प्रसारण समय होगा 10:30 पर। 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार। पूर्वाहन 11:00 हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में और तब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से 5:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। 5:30 पर आप सुनेंगे कल बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन। भोजपुरी लोकगीत 6:00 5:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से 6:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम गांव घर सांझ गीत। भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर। 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। ई मन पसंद ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:50 पर। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या हम रिले करेंगे। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा की प्रस्तुति होगी 9:00। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बंदगी रसरंग। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00। 10:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे 9:30 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से और 11:00 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी से रिले किए जाएंगे। ये थी कल प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है।

मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने की लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Delhi, Haryana, Chhattisgarh, and coastal Andhra Pradesh. In the Malaysia Masters Super Badminton, India's Ashmita Chaliha advanced to the women's singles quarterfinals in Kuala Lumpur today. She will next face 8th seed Line Hoymar Kjelsvik of Denmark. And that is the end of this news bulletin.
1: हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।